0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: वेलकम टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्सटेप। दैट इज राइट, यही है उस शो का नाम। और अगस्त के महीने में बिल्कुल वो भी नेशनल डे वाले लॉन्ग वीकेंड का जायजा सबके जुबान से सुनते हुए मैं हूँ 90s वाली आपके साथ। भाई कुछ ऐसा है कि 90s की दुनिया में घुस जाते हैं, क्योंकि हमारी तो मंडे को छुट्टी है नहीं, हमारा कोई लॉन्ग वीकेंड है नहीं, तो हम वो करते जो हम करते बेस्ट है, विच इज आवर जॉब टू कीप यू एंटरटेन। फिलहाल वो वक्त शुरू हो चुका है जिसको हम बुलाते हैं 90s के वो दिनों में, जहां पे हम यू डूब जाएंगे, यू उन गलियों में खो जाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, एंड इन गलियों से बाहर निकलने का मन भी नहीं करेगा। भाई आपका फेवरेट कैसेट बॉक्स यहां पे खुलने वाला है, क्या खुल चुका है आज जो है? चलिए एक सवाल पूछती हूँ कि आपको याद है अपना बचपन या उसकी फीलिंग्स याद है? सोचिए, कभी किसी पुराने गाने की तरफ यू नो दो लाइन सुनते ही आपको स्कूल का कॉरिडोर जो है वो याद आ गया, या फिर किसी चिप्स की खुशबू से समर वेकेशन याद आ गया, या फिर किसी एक पुरानी फिल्म का डायलॉग सीधा यू नो दिमाग में, वो ड्राइंग रूम, वो टीवी, वो पूरी फैमिली सब एक साथ आ गए। क्यों होता है ना ऐसा, होता है ना। 90s सिर्फ एक, जैसा कि मैं कहती हूँ, टिकट नहीं था, वो एक इमोशन था, एक ऐसा जमाना जहाँ हैप्पीनेस का साइज छोटा था लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। एक कैसेट, वो एक क्रिकेट बैट, एक साइकिल, एक मूवी टिकट, एक टिफिन बॉक्स, बस दिन सक्सेसफुल। और हमारा बॉलीवुड, उसने तो हमारे बचपन को बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया। कभी शाहरुख खान के खुले हुए वो बाहें, कहीं वो हमारे चीची की एनर्जी, या फिर माधुरी दीक्षित की आहा स्माइल, कभी रहमान साहब का वो म्यूजिक, कभी नदीम श्रवण की वो मेलोडीज, आज भी बस इसी तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, यूं ही खूबसूरत गाने सुनते हुए जाएंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, एंड वी विल जस्ट सिंपली हैव अ गुड टाइम। क्योंकि 90s में भी तो हम यही किया करते थे, है ना, वी जस्ट सिंपली यूज टू हैव अ गुड टाइम, सेम टू सेम एकदम। चलिए 90s का म्यूजिकल्स यहाँ पे सफर शुरू करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

0: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
1: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: आजकल पता नहीं क्या क्या गेम्स निकल के रखे हैं और PS5, PS10 पता नहीं, इट इज सो वास्ट। बट इफ यू आस्क अ 90s किड, आई थिंक द 90s किड कैन एडजस्ट टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वी हैव सीन इट ऑल, वी हैव प्लेड इट ऑल, वी नो इट ऑल। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड वन ऑफ द कार्ड गेम्स विच आई रिमेम्बर इज यूजुअली, अभी मैंने हाल ही में खेला भी था ऊनो, ठीक है, किसी फ्रेंड के बच्चे के साथ में खेल रही थी। बट देन आई वॉज रिमेम्बरिंग, भाई हम कौन सा खेलते थे, हम निकालते थे अपने ट्रम्प कार्ड्स, याद है आपको, सुपर हीरो, डायनासोर्स, कार्स, एयरप्लेन, सब एक टेबल पर आ जाते थे। वो कलरफुल कार्ड्स आपको याद है, हर कार्ड के पीछे नंबर्स होते थे, स्पीड, पावर, हाइट, वेट, टॉप स्पीड, हॉर्स पावर। माई ब्रदर यूज टू हैव दिस WWF का ट्रम्प कार्ड्स जो है वो उसके पास हुआ करता था। और फिर शुरू होती थी असली बैटल, मेरा 320, अरे तेरा 320, मेरा 450, जीत गया। खेल सिर्फ कार्ड्स का नहीं होता था, कॉन्फिडेंस का भी होता था। कभी कार्ड देखते ही लग जाता था ये राउंड तो पक्का मेरा है, और कभी किसी दोस्त के पास इंपोर्टेड ट्रम्प कार्ड्स का नया पैक आ गया तो बस वो उस दिन हमारे पूरे मोहल्ले का सेलिब्रिटी बन जाया करता था। एक एक कार्ड को कितनी संभाल के रखते थे, कॉर्नर्स फोल्ड ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, प्लास्टिक रबर बैंड लगा के पूरा डेक सिक्योर किया करते थे। सबसे फनी बात, रूल्स हर ग्रुप के थोड़े अलग हुआ करते थे, हर कॉलोनी का अपना एक वर्जन हुआ करता था। कोई हाईएस्ट नंबर से जीतता था, कोई स्पेशल बोनस रूल बना देता था, और हारने वाला हमेशा बोलता कि चल चल चलो एक वन मोर राउंड प्लीज। 90s में गेमिंग ग्राफिक्स उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन इमेजिनेशन फुल HD में थी। एक छोटा सा डेक और पूरी दोपहर यूं ही निकल जाया करती थी। बताइए इंटरनेट कहाँ है, वाईफाई भी नहीं है, कोई चार्जिंग का टेंशन नहीं, सिर्फ दोस्त, थोड़ी सी कॉम्पिटिशन और बहुत सारी हंसी। आजकल मोबाइल गेम्स में अवतार्स होते हैं, लेकिन उस वक्त हीरो कौन है और विलन कौन, ये ट्रम्प कार्ड डिसाइड किया करता था। 90s के बच्चों का गेमिंग का असली मजा स्क्रीन देखकर नहीं, एक दूसरे की आंखों में देखकर जीता जाता था, है ना मेरे दोस्त, करा दिया ना याद। इसी बात के साथ, बातों के साथ साथ 90s के गाने चलते रहने चाहिए एकदम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

सुलझाना से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। भाई आजकल अगर आप अपने किचन में जाए तो फ्रिज के मैग्नेट्स जो है उनको देखिए, पेरिस, सिंगापुर, लिव लव लव, पता नहीं क्या क्या क्यूट से स्माइलीज, बेसिकली ट्रैवल की मेमोरीज सब फ्रिज पे हमारे लगे मिलते हैं। लेकिन 90s के घर में फ्रिज डेकोरेशन का डेफिनेशन ही काफी अलग था, मुझे ऐसा लगता है। एंड एटलीस्ट इन द मिडिल क्लास फैमिलीज दिस इज व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम माय हाउस। फ्रिज पर सबसे परमानेंट रेजिडेंट कौन होता था उस टाइम पे? बिजली का बिल, उसके साथ कभी कभी दूध वाले का हिसाब, कभी गैस बुकिंग का नंबर, कभी डॉक्टर साहब का विजिटिंग कार्ड, कभी किसी प्लम्बर का छोटा सा कार्ड। फ्रिज कम, घर का नोटिस बोर्ड ज्यादा हुआ करता था। और वो मैग्नेट्स भी कितने सिंपल होते थे, गोल वाला, फ्रूट शेप वाला, या किसी कंपनी का फ्री प्रमोशनल मैग्नेट, बस उसके नीचे पूरे घर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चिपकी हुई पाई जाती थी। एंड याद है यू नो कभी कभी ना किचन में पापा आते ही बोलते थे कि भाई कहाँ है बिजली का बिल कहाँ है। एंड मॉम यूज टू काइंड ऑफ बिना देखे जवाब कि भाई फ्रिज पे लगा हुआ है, कहाँ ढूंढ रहे हो, वहीं पे तो रहता है, कहाँ जाना है। हर घर का आंसर सेम। और कभी कभी बिल की लास्ट डेट निकलने वाली होती तो उस पर रेड पेन से सर्कल भी बना होता। रिमाइंडर ऐप नहीं थी, फ्रिज ही नोटिफिकेशन सेंटर था। और सबसे फनी बात, फ्रिज खोल ले जाओ पानी पीने और नजर पहले बिल पे पड़ती थी, पानी बाद में, ड्यू डेट पहले आ जाए। भाई आज रिमाइंडर्स मोबाइल भेजता है, राइट, कैलेंडर नोटिफिकेशन भी देता है, लेकिन 90s में किचन से ज्यादा फ्रिज ही पूरे घर का सेक्रेटरी हुआ करता था। आपको नहीं लगता? उसे सब पता होता था किस दिन कौन सा बिल भरना है, किसको फोन करना है और किस नंबर पे गैस बुक करनी है। एंड ऑनेस्टली यू नो कभी भी मैं किसी के घर जाऊँ, मुझे ऐसा कुछ दिख जाए ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार याद आ गई यार उन दिनों की याद आ गई। आप में से कोई आज भी ऐसा करते हैं, फ्रिज पे मैग्नेट के साथ बिल चिपका दिया वहाँ पे? पोस्टर्स तो बहुत सारे लोग वहाँ पे लगाते हैं रिमाइंडर्स वगैरह डालने के लिए, बट बिल नहीं चिपकाते होंगे, नहीं ना? इट्स वेरी 90s थिंग। आह, आई मिस दोस डेज। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून। फिलहाल के लिए चलते हैं, एक लेते हैं 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
2: शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
0: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com
0: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर
3: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस डियर मस्ती दिल से जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है सो राइट टू अस डियर मस्ती दिल से

0: सुलझाना से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: अच्छा, फ्रिज एक जगह होती थी लेकिन फोन भी एक जगह हुआ करती थी जहां पे लैंडलाइन रखा हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतरा आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। यहाँ पर आज भी अगर कुछ ढूंढना हो, रेस्टोरेंट, डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बस क्या करना है, फोन निकालो दो सेकेंड में आपको जवाब मिल जाए। लेकिन 90s में देखिए ना ही गूगल था ना ही कोई और सर्च इंजन, हुआ करता था फोन का डायरेक्टरी, वो मोटी सी येलो कलर की डायरेक्टरी जो अक्सर लैंडलाइन फोन के बिल्कुल नीचे रखी हुई होती थी, और उसे उठाना भी एक मिनी वर्कआउट के जैसे ही, एकदम डंबल उठाने जैसे एकदम फील आता था कि भाई इलेक्ट्रिशियन का नंबर देखना ज़्यादा। तो फिर सीधा हम खोलते थे अपना वो येलो पेजेस और डायरेक्टरी वाला, अल्फाबेट के हिसाब से पेज का पैलेट है ना फिर शुरू होती थी सर्च, डॉक्टर का चाहिए तो उसका नाम क्या है, फिर उसे अल्फाबेट में चाहो, दूसरा किसी रेस्टोरेंट का कोई नाम ढूंढना है तो उसका नाम देखो, फिर उसके अल्फाबेट तक जाओ, और फिर ऐसे उंगली रख के सर से देखते रहो, बिकॉज वो इतनी छोटी फॉन्ट में इतने करीब एक दूसरे के होते थे दैट इफ यू डोंट कीप द फिंगर ऑन दैट पेज एंड देन ध्यान से उसको स्लाइड डाउन नहीं करो तो फिर आप मिस कर जाओगे, है ना। एंड कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब मेरी मम्मी ने तो इंपॉर्टेंट वाले तो हाइलाइटर से मार्क कर रखे थे कि आप उस पेज पे पहुंच जाओ तो आप सीधा उसको देखो और आपको पता चल जाएगा कि ये तो यहाँ पे रखा हुआ है, सब कुछ एक किताब के अंदर। कितनी पेशेंस हुआ करती थी ये सारी चीजें, है ना, करते हुए एंड फोन फिर भी जो है लग जाता था। एक तो जब नंबर मिल गया तो नंबर लगाया तो बिजी टोन, दूसरा नंबर लगाया फिर तीसरा नंबर लगाया, लाइन में बफरिंग यू नो कम थी लेकिन एफर्ट पूरा पूरा हम डालते हैं। आज हम कहते हैं दैट गूगल इट मैन, 90s में कहा करते थे कि भाई डायरेक्टरी निकाल लो, देख लो, है ना, ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है और उस डायरेक्टरी में सिर्फ फोन नंबर्स नहीं थे, पूरा शहर बसा हुआ था। मैंने जो है क्रश का नंबर डायरेक्टरी से निकाला हुआ है, लाइक लिटरली मैं हम लोग सारी दोस्त मिलकर ना, नहीं निकालना ही, चलो राहुल बुला लो, उसको राहुल का नंबर निकाला है। अब भाई शहर में बहुत राहुल, और राहुल के नंबर से भी तो डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा ना, राहुल के पापा का नंबर पता होना चाहिए क्योंकि उनके नाम से घर पे फोन लगा होगा। तो पहले तो स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करके जैसे तैसे करके पता करो कि इसके पापा का नंबर कहाँ है, क्या है, नाम क्या है, उसके बाद पापा के नाम से डायरेक्टरी पे जाओ, और अगर गलती से वो कोई कॉमन नाम निकल गया भाई साहब बहनजी, ओ माय गॉड, तब तो हो जाती थी बहुत टेंशन। क्योंकि ऐसा ही हुआ था, अजय नाम था उसके पापा का, और इतने सारे अजय, अब कौन से अजय का बेट, चलो हमने उनका वो भी लगा लिया, ठीक है सरनेम, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कॉमन वाला था तो कई सारे वो हो गए थे। फिर हम लोगों ने हर उस नंबर पे कॉल करके, जो मेहनत देख रहे हो आप, ये सिर्फ और सिर्फ 90s में पॉसिबल था। आजकल नो पेशेंस, हमारे में भी नो पेशेंस, बट उस टाइम पे जान लगा दी थी हमने, जान। स्टे ट्यून्ड।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

रील से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। मैं हूँ अंतरा आपके साथ। एंड भाई, दिल तो पागल है, बताओ तो शाहरुख खान का नाम क्या था? आपको हो गया अंतरा, ये सवाल हमसे जो 90s का शो सुन रहा है। कम ऑन, हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन टू अस। या राहुल, राइट, कुछ होता मैं शाहरुख खान का नाम क्या, राहुल। कभी कभी तो लगता था अगर 90s की फिल्म में शाहरुख खान है तो नाम पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि राहुल ही होगा। सच बताओ, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग बात है 90s वाली। वो मैं बताऊंगी आपको। सो 90s में कई राइटर्स और डायरेक्टर्स को ये लगता था दैट राहुल एक ऐसा नाम है जो मॉडर्न भी लगता है और काफी सिंपल भी है। इसकी रिटेन वैल्यू जो है वो काफी हाई है और रोमांटिक हीरो की पर्सनालिटी पर परफेक्टली सूट करता है। ना बहुत हैवी, ना बहुत अनकॉमन, बस एक ऐसा नाम कि राहुल, नाम तो सुना होगा। सी हाउ इट कम्स, लाइक इट्स मेड फॉर ईच अदर, सो जो ऑडियंस को अपना सा लगे। इसीलिए कई सारी रोमांटिक फिल्म्स में लीड कैरेक्टर का नाम बार बार राहुल रखा गया है। एंड धीरे धीरे ऑडियंस ने भी राहुल को बॉलीवुड का परफेक्ट लवर बॉय का एक उसके रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और देखिए ना, नाम सिर्फ नाम नहीं रहता, उसके साथ एक इमेज भी जुड़ जाती है। राहुल मतलब दिल से प्यार करने वाला, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सा नॉटी एंड फुल ऑन रोमांटिक। जैसे 90s में सिर्फ राहुल ही फेमस नहीं थे, राज फेमस था, प्रेम भी फेमस था, अजय विजय तो बहुत ही फेमस थे। ये सब नाम भी अपनी अलग अलग पहचान बना चुके थे, लेकिन राहुल का क्रेज कुछ अलग ही लेवल पे था। लेट मी टेल यू, कितने बच्चों का नाम आज भी, ठीक है, राहुल आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपके आसपास, सिर्फ इसलिए क्योंकि मम्मी पापा को शाहरुख खान पसंद है। आज भी जब भी कोई you know, ऐसी मूवी देखो, हाय आई एम राहुल, भाई किसी से मिलो, ठीक है, कोई कहे हाय आई एम राहुल, सेंटेंस में कंप्लीट करती थी, ओ नाम तो सुना हुआ है। उसको समझ में आए ना आए, मुझे समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या जोक क्रैक किया, या फिर आई वुड फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ, आई लव इट व्हेन दिस काइंड ऑफ इंस्टेंसेस जो है वो होते रहते हैं आसपास। मजे आते हैं यार, इतना सीरियस क्या रहना है हर टाइम पे, नहीं, मस्ती जिंदगी में थोड़ी बहुत तो रहनी ही रहनी चाहिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, वो तो डेफिनेटली रहना चाहिए, इसके बिना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? तो फिर जाना किधर है, यही रहो।

0: chicken curry, succulent kebabs, royal curries and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge and say happy National Day Singapore over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
2: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। तो कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से कोई खुशबू आए और बिना किसी वार्निंग के आप 25-30 साल पीछे चले जाएं। सच है ना, कुछ खुशबू ना यादें खोल देती है। 90s में जब सर्दी शुरू होने वाली होती थी तो घर की वो बड़ी सी अलमारी, गोदरेज की अलमारी चलो बात करते हैं, उसके अंदर से निकलते थे स्वेटर्स एंड शॉल्स एंड रजाई एंड ब्लैंकेट्स, और उन सबके बीच छोटी छोटी सफेद रंग की, आई नो राइट, यू गेस दैट राइट, नैप्थलीन की बॉल्स। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुलता था, एक अलग से एकदम स्मेल का एकदम सुनामी आपके तरफ आता था कि भाई आज शायद उस खुशबू को का नाम जो है सबको याद ना हो, लेकिन फीलिंग आज भी याद है, राइट। एक एक मम्मी का, हमारे ये गोदरेज की अलमारी से आती थी, दूसरी आती थी ट्रंक से, जो वो से एक स्टील वाली ट्रंक स्टोरेज में रखी हुई रहती थी, या फिर पहले स्टोरेज अब बेडकम बॉक्स में रखी रहती थी, अब तो वो स्टील वाली निकाली थी ट्रंक बाय द वे। तो उसमें से जब भी ऊनी कपड़े निकाले जाते थे तो उधर से आती थी ये वाली स्मेल, एंड यू नो फोल्ड खेल मम्मी खोलती और बोलती कि देखो छोटा तो नहीं हो गया। हम भी एक्साइटेड किया, स्वेटर पहनने का टाइम आ गया है। उस वक्त विंटर फैशन ब्रांड डिसाइड नहीं करता था, मम्मी की अलमारी डिसाइड करती थी। किसी स्वेटर की स्लीव थोड़ी लंबी, किसी का बटन थोड़ा ढीला, किसी पर दादी ने बुनाई से नाम का डिजाइन बनाया हुआ है। हर वुलन कपड़े के साथ एक मेमोरी भी फोल्ड होकर रखी होती थी, एंड वो स्मेल सिर्फ कपड़ों की नहीं होती थी, उसमें पूरा बचपन बसा हुआ है हमारा, है ना। स्कूल की वो ठंडी ठंडी सुबह है, पिकनिक, विंटर वेकेशन, धूप में बैठे मूंगफली खाना, सब कुछ एक साथ याद आ जाता था। आजकल वार्डरोब्स कितनी फैशनेबल और डिजाइनर हो गई है, राइट, परफ्यूम सैशेज वगैरह आ गए हैं, लेकिन वो पुरानी अलमारी और उसमें बसी हुई वो फेमिलियर सी खुशबू, उसका रिप्लेसमेंट आज तक किसी ने नहीं बनाया। इसीलिए कभी कभी यादें देखने से नहीं, सिर्फ एक खुशबू से वापस आ जाती है। सो वेरी ट्रू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यूं ही 90s के गलियारों में खोते हुए रहेंगे, लेकिन 90s के गानों के साथ। तो रहिए मेरे साथ।

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ और चल रहा है यहाँ पर मस्ती 90s में एक स्टेप। भाई 90s के घर में एक कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट आपको हर रोज होती हुई मिलेगी, भाई हॉर्लिक्स पी लो, बॉनविटा पी लो, हाफ हम बच्चे तो मतलब हाफ, बस हाफ, पूरा नहीं पियेंगे। याद आया, ग्लास पूरा भर कर आता था और उसे देखते लगता था कि इसको इतना सारा कौन पिएगा। फिर होती थी जिंदगी और पूरी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेगोशिएशन, थोड़ा कम कर दो, बस आधा पियेंगे, आज मन नहीं है, और मम्मी का फिक्स्ड सा जवाब, पी लो सेहत के लिए अच्छा है, वरना या तो ये खाओ या चाटा खाओ, यू डिसाइड। देखिए बड़े ही लिमिटेड नाम थे, हॉर्लिक्स, बॉनविटा, कॉम्प्लान, है ना। हर घर का अपना फेवरेट हेल्थ ड्रिंक होता था और हर बच्चे का उससे बचने के अपने फेवरेट एक्सक्यूज। कोई बोलता है गर्म है, कोई बोलता है ठंडा करके दो, कोई बाद में पीती हूं, लेकिन एंड में क्लास फिनिश करना ही पड़ता था और अगर ऊपर थोड़ी सी फोम बन गई तो उसे देखकर भी अलग ही एक्सप्रेशंस आ जाते थे। सबसे फनी मोमेंट जब मम्मी चेक करके पूरा पिया और हम ग्लास सिंक में रखकर भाग जाने की वो जो कोशिश हमारी होती थी कि मम्मी एक नजर ग्लास के अंदर देखती और तुरंत पकड़ लेती कि नीचे अभी भी बच्चा, इधर वापस आना, इधर जरा वापस आना। आज की डेट में हम कितने अच्छे बच्चों की तरह, हम प्रोटीन शेक दो हमको, मतलब शुरू में तो मुझे उसका टेस्ट इतना गंदा लगता था ना प्रोटीन शेक का, बट आप देखो मैं पूरा पूरा पूरा खत्म करती हूँ एकदम एंड तक। कितने ऑप्शंस है ना, ये सारी चीजें पहले पी लिया होता तो आज पीना नहीं पड़ता। पहले तो मैंने प्लांट्स को भी पिलाया हुआ है, बट एनीवेज या आई हैव डन दैट। 90s में स्ट्रांग बनना हो, एग्जाम में अच्छा करना हो, हाइट बढ़ानी हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही क्लास में मिलता था। सच कहूं उस वक्त हमें लगता था कि हॉर्लिक्स पीना तो पनिशमेंट है। आज मम्मी अगर वैसे ही प्यार से बोले कि भाई बेटा दूध पी लो तो शायद बिना नेगोशिएशन के एक ही सांस में पूरा पी जाए, क्योंकि कभी कभी टेस्ट से ज्यादा याद उस ग्लास को पकड़ने वाले हाथ की आती है। ओ हो, हाय क्या ही बोल दिया मैंने, मैं दिस हैपेंस विद मी। टेस्ट से ज्यादा याद उस ग्लास को पकड़ने वाले हाथ की आती है। Stay tuned.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
4: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
5: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: दिस इज सो वेरी 90s दैट टिल डेट आई कीप एक बड़े से प्लास्टिक बैग के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक बैग एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यही करते हैं, अब भी यही करते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ। भाई 90s के घर का ये एक गोल्डन रूल हुआ करता था, कोई भी चीज एक बार यूज होकर रिटायर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आज जैसे शॉपिंग से आए, बैग निकाला, कल डस्टबिन। 90s में प्लास्टिक की शॉपिंग बैग की भी सेकंड इनिंग्स हुआ करती थी। याद है मार्केट से सामान आता था और मम्मी सबसे पहले क्या करती थी, बैग को सीधा डस्टबिन में नहीं, प्यार से उसको सीधा करती थी, सपाट करती थी, उसको फोल्ड करती थी, कभी ट्रायंगल बनाती थी, कभी स्क्वायर बनाती थी और फिर एक बड़ी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर बाकी सारे प्लास्टिक बैग्स के साथ उसको रख दिया जाता था। हर घर में एक बैगों का बैग जरूर होता था और उसके अंदर इतनी वैरायटीज, मेडिकल स्टोर की, ग्रोसरी की, क्लोथिंग स्टोर की, गिफ्ट शॉप की, जैसे अपना ही मैंने कलेक्शन बनाया हो। फिर जब भी किसी को कुछ देना हो या अचानक से सामान ले जाना हो, मम्मी सीधा वही लेजेंडरी बैग की कलेक्शन खोलती कि रुको इसमें रख लेती हूँ, हर साइज शेप फिगर सबका मिल जाएगा उसमें। कमाल देखिए, कोई बैग फटता नहीं था यार, सब बार बार ड्यूटी पर आ जाया करते थे। 90s में रीयूज वर्ड शायद हमने पढ़ा भी नहीं था लेकिन प्रैक्टिस हमने सब कर रखा था। प्लास्टिक बॉटल पानी की, आइसक्रीम का जो बॉक्स था डब्बे वाला, मिठाई का डब्बा स्विंग बॉक्स बन जाया करता था, शॉपिंग बैग का ही बार बार रीयूज करना। आज सस्टेनेबिलिटी एक ट्रेंड है, तब वो घर की आदत थी एंड उस जमाने में चीजों की वैल्यू सिर्फ पैसे से नहीं होती थी, उसका अगला यूजेज क्या होगा उससे की जाती थी। इसीलिए आज भी अगर मम्मी किसी शॉपिंग बैग को फोल्ड करके रख देती है ना, उनको रोकना नहीं यार, क्योंकि वो सिर्फ बैग नहीं संभाल रही होती, 90s का एक तरीका संभाल रही होती है जहां पे हर चीज की एक और कहानी होती थी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बिल्कुल यूं ही बनी रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये बातें ना अभी कहां खत्म होंगी, अभी तो और भी चलेंगी, लेकिन साथ साथ में चलेंगे हमारे 90s वाले ब्यूटीफुल से गाने। स्टे ट्यून्ड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ। एंड यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, मस्ती 90s मिक्स टेप। जी हाँ, और मैं 90s वाली अंतरा आपके साथ। सो कभी नोटिस किया है, आज भी आजकल की जो बॉलीवुड फिल्म्स है, एयरपोर्ट ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी मूवी का पार्ट होता है ना। इट्स वेरी कॉमन, कोई लंदन जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क से आ रहा है, और अब तो एयरपोर्ट के लुक्स भी आ चुके हैं। सो इट्स लाइक वेरी वेरी वेरी कॉमन। तो ये 90s की अगर आप फिल्में याद करो, एयरपोर्ट सीन्स कितने कम हुआ करते थे, और इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन था। उस वक्त एयरपोर्ट्स पे शूटिंग करना आज की तरह आसान नहीं होता था। परमिशन, सिक्योरिटी रूल्स, लिमिटेड शूटिंग टाइम और काफी ज्यादा एक्सपेंसेस। इसीलिए फिल्म मेकर्स अक्सर या तो एयरपोर्ट सीन्स अवॉइड कर देते थे, या फिर स्टूडियो के अंदर ही एयरपोर्ट जैसा सेट बना दिया करते थे। थोड़े से चेक इन काउंटर्स बना दिए, कुछ सूट केसेस दिखा दिए, 2-3 एक्स्ट्रा ट्रॉलीज लेकर चल रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, और बस ऑडियंस मान लेती थी कि हाँ भाई दिखा रहे तो एयरपोर्ट ही होगा। 90s का सिनेमा इमेजिनेशन पर बहुत ही डिपेंडेंट था। हर चीज रियल लोकेशन पर शूट करना जरूरी नहीं होता था, स्टोरी रियल लगनी चाहिए, बस वही काफी है। और वैसे भी उस दौर में फॉरेन ट्रैवल भी कहाँ इतना कॉमन था, राइट? इसीलिए एयरपोर्ट देखना भी अपने आप में थोड़ा एक्साइटिंग लगता था। और अगर फिल्म में एयरपोर्ट आ गया तो समझ जाइए या तो हीरो बाहर जा रहा है या कोई इमोशनल रीयूनियन होने वाला है। आजकल VFX है, रियल एयरपोर्ट्स हैं, ड्रोन शॉट्स हैं, लेकिन 90s के फिल्म मेकर्स लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी ऑडियंस को पूरी दुनिया दिखा दिया करते थे। और शायद इसीलिए हम लोकेशंस नहीं कहानी याद रखते हैं, क्योंकि 90s बॉलीवुड हमें एक बात जरूर सिखाता है, मैजिक बजट से नहीं इमेजिनेशन से बनता है। भाई मैंने एक मूवी देखी थी, इंग्लिश बाबू देसी मेम, एंड टू ऑफ द वेरी वेरी आर लव्ड 90s के एक्टर्स उसमें थे, शाहरुख खान और सोनाली बेंद्रे। आपने अगर वो मूवी देख ली, एक तो पहले आप कहोगे कि ये क्या ही मूवी तुमने सजेस्ट कर दी, लेकिन इट इज क्रिंज टू द लेवल नेक्स्ट। और उसका एयरपोर्ट सीन अगर आपने देख लिया तो भाई आप कहोगे कि मतलब ओ माई गॉड, आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट। लेट्स गो।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
2: भाई 90s के बच्चों के लिए एक इंसान किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं था। वो एक्टर नहीं, ना ही वो क्रिकेटर, ना ही वो सिंगर, वो था हमारा केबल वाला। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप सुन रहे हो आप। मैं हूँ 90s वाली यात्रा आपके साथ। याद आया आपको कभी अचानक टीवी पर सिर्फ स्नो ही स्नो, यानी कि वो ये आने लगता था, या चैनल्स गायब हो जाते थे? जी हाँ, चैनल्स गायब ही हो जाया करते थे, लाइक क्वाइट लिटरली। बस फिर घर में एक ही अनाउंसमेंट होती थी कि केबल वाले को फोन किया जाए, और जिस दिन केबल वाला घर आता था, लगता था जैसे नासा का इंजीनियर हमारे घर पे उतर के आया हो। एक हाथ में टूल्स, दूसरे हाथ में वायर, और सीधा टीवी के पीछे, कभी टेरेस पर, ठीक है, कभी बालकनी में, कभी जंक्शन बॉक्स खोलकर कुछ एडजस्ट कर रहा होता था, और नीचे से कोई ना कोई जोर से चिल्लाता, आ गया, पिक्चर आ नहीं रही। हाँ जी हाँ जी, ये सिर्फ लाइट वाला और वो जो एंटीना वाला बच्चे नहीं करते थे, केबल वाले भैया भी हमसे यही कराते थे। फिर केबल वाला बोलता था, अब देखो अभी आया, और टीवी पर जैसे ही पिक्चर क्लियर होती थी, पूरे घर के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी कि भाई जादूगर अपना जादू करके गया है। उस वक्त चैनल्स भी कितने स्पेशल लगते थे, राइट? एक नया म्यूजिक चैनल मिल गया, या मूवी चैनल और ज्यादा पहले से क्लियर हो गया, बस पूरा दिन सक्सेसफुल। और केबल वाले की इंपॉर्टेंस देखिए, मोहल्ले में सब उसे उसके नाम से जानते थे कि शर्मा केबल वाले भैया को बुलाओ, गुप्ता केबल वाले भैया आ गए। आज वाईफाई स्लो हो जाए तो हम रीस्टार्ट का बटन दबा देते, राइट? 90s में एंटरटेनमेंट रुक जाता था जब तक केबल वाला ना आ जाए। और सच कहूं, उस जमाने में बफरिंग कम थी, लेकिन केबल वाले का इंतजार ज्यादा हुआ करता था। एंड शायद इसीलिए टीवी सिर्फ एक मशीन नहीं लगती थी, पूरे घर का एक्साइटमेंट का सेंटर हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अगर मेरी बात सुनते सुनते आपको एक मोमेंट, एक पल ऐसा लगे कि आपका पुराना वक्त एकदम साइंस से आपके आंखों के सामने आ गया हो, I think my work is well done. Nahi, stay tuned.

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। मस्ती 90s मिक्स टेप सुन रहे हो आप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ। और 90s भी वो एक टाइम था जब घर में किसी बिस्किट के पैकेट का जिप लॉक नहीं होता था। वो जिप लॉक होता है क्या था वो तो हमें पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बिस्किट कभी हवा नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि रबर बैंड ही किंग था। अलग अलग कलर के, पिंक, येलो, ग्रीन, और फिर उसमें दो दो कलर्स के भी आते थे बाय द वे, जस्ट इफ यू रिमेम्बर। सो पार्ले जी हो, मैरीगोल्ड हो, ग्लूकोज बिस्किट हो, पैकेट खुला, सबने दो तीन बिस्किट निकाले एंड तुरंत मम्मी पैकेट का मुंह फोल्ड करती थी, दो बार मोड़ती उसको और उसके ऊपर एक रबर बैंड लगा दिया करती थी। बस हो गया जी एयर टाइट। कौन से क्लिप्स, कौन से कंटेनर्स, कोई फैंसी स्टोरेज बॉक्सेस नहीं, एक छोटा सा रबर बैंड और पूरा साइंस कंप्लीट। वैसे ही 90s के घर में रबर बैंड्स की कभी कभी भी नहीं होती थी। कभी न्यूज़पेपर के साथ फ्री मिल रहा है, कभी सब्जी वाले से मिल रहा है, कभी दूध के पैकेट के आसपास। मम्मी उन्हें संभाल कर रखती थी। हर ड्रॉअर में दो चार रबर बैंड्स तो ऐसे ही मिल जाया करते थे पड़े हुए इधर उधर। और सिर्फ बिस्किट के लिए नहीं, धनिया बांधना हो, पेंसिल का बंडल साथ में करना हो, ग्रीटिंग कार्ड्स को साथ में बांध के रखना हो या स्कूल का प्रोजेक्ट, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक रबर बैंड। आज किचन में एयरटाइट जार्स की लाइन लगी हुई होती है, वैक्यूम कंटेनर्स है, फूड क्लिप्स है, सिलिकॉन सील्स है, लेकिन उस वक्त एक रबर बैंड से ही घर चल जाता था और कमाल की बात काम भी परफेक्टली करता था। 90s ने हमें सिखाया हर चीज का एक्सपेंसिव सोल्यूशन जरूरी नहीं है, कभी कभी सबसे सिंपल आइडिया ही सबसे स्मार्ट होता है। और आज भी किसी पैकेट पे, वैसे मेरे घर में तो आपको मिल जाएगा कुछ कुछ पैकेट्स जो है ना मैंने रबर बैंड से ऐसे बांध के रखे हुए हैं। कुछ आदतें आपकी ना नहीं जाती है, ऐसा लग रहा है मुझे तो विरासत में मिली हुई है कि बेटा हमने तो ऐसे रखा है तुम देख लो। मैंने कहा देखना क्या है, हम भी ऐसे रख लेंगे, हम दोनों चीजें करेंगे। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव दोज क्लिप्स एंड एवरीथिंग एंड ज़िपलॉक बैग्स, आई हैव एवरीथिंग, बट स्टिल यू विल फाइंड दैट वन पैकेट कहीं ना कहीं जिस पे रबर बैंड बता होगा। क्या करे यार, 90s वाला अपन का दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। स्टे ट्यून्ड।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर। थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,
3: रेडियो मस्ती 24/7। डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप। यस, आज की कैसेट का साइट ए भी दिल के बड़े करीब था, तो हमने ट्रम्प कार्ड्स की फ्रेंडली राइवलरी खेली। वहां पर फ्रिज को घर का नोटिस बोर्ड बनाया, टेलीफोन के नीचे रखी डायरेक्टरी को फिर से खोला, शाहरुख और 90s के बॉलीवुड का वो जो राहुल वाला फैक्ट भी जाना, पुरानी अलमारी की खुशबू महसूस की, हॉर्लिक्स के ग्लास पर मम्मी से नेगोशिएशन की, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की सेकेंड लाइफ याद की, एयरपोर्ट वाले बॉलीवुड का बिहाइंड द सीन्स को समझा, केबल वाले भैया का इंतजार किया और बिस्किट का पैकेट को रबर बैंड से फिर से बंद किया। नोटिस किया 90s की सबसे बड़ी लग्जरी, ना इम्पोर्टेड टॉयज थे ना एक्सपेंसिव गैजेट्स, लग्जरी थी चीजों को संभाल कर रखना। एक शॉपिंग बैग दूसरी बार काम आता था, एक रबर बैंड महीनों तक चलता था, एक स्वेटर हर सर्दी में वापस मिलता था, और एक याद सालों बाद भी बिल्कुल नई लगती है। शायद इसीलिए 90s का याद करते वक्त ये वक्त हमें सिर्फ चीजें याद नहीं दिलाता, उन चीजों के साथ जीने का तरीका भी याद आता है। अगर आज के एपिसोड ने आपके किसी दिल के पुराने ड्रॉर को खोल दिया तो उसे बंद मत कीजिए, उसमें और भी बहुत सारी यादें रखी होंगी, हम उन्हें एक एक करके ढूंढ ही लेंगे। आप हमारे साथ उन यादों को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं 9158963 पर। फिलहाल अपनी 90s वाली अंतरा को बिल्कुल दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कसरत, एक और कहानी और बचपन की ढेर सारी खूबसूरत यादें लेकर बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगी। एंड या, आई एम साइनिंग ऑफ, हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। देखो मियां, हमें इतनी सी मैथ्स आती है, अरे हमको नहीं पहचाने। समर, मिलते हैं आपसे रेडियो मस्ती पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं लौट आया हूँ, समर है मेरा नाम। दोनों भाई फैला कर रहा हूँ आपको सलाम। सलाम दोनों भाई फैला कर थोड़ी करते हैं, ये अपन का स्टाइल है। तो गेम छे सिंगापुर सारू छे, अखा सिंगापुर मारू छे। ले आया हूँ आपके लिए लेजेंड्स अचीवर सीरीज पर एक और मस्त एपिसोड। मस्त इसलिए क्योंकि रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर है, जो आपको मस्ती दे रहा है 2009 से लगातार। चला तनक हमका बताई, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 क्या होता है? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 क्या का, थोड़ा इजी करें। ओके, तो बताइए 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या होता है? ये मुश्किल है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या हुआ, ये बता दीजिए। मुझे मालूम है आपको आता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। हाँ, 2×2=4 होता है, ये आता है जरूर, और सच कहूँ तो वो अच्छा है। बचपन में माँ ने कविता सुनाकर 10 तक गिनती सिखा दी थी, वरना इतनी भी गणित हमको कहाँ आ पाती। लेकिन यह माँ की याद आ गई उनकी कविता की, तो वो अब मैं सुना देता हूँ आपको। एक था राजा का बेटा, 2 दिन से बिस्तर पर लेटा। 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। 5 मिनट में गर्म कराई, 6-6 घंटे बाद पिलाई। 7 दिन में नैना खोले, 8वें दिन मुंह से बोले। 9वें दिन में दौड़ लगाई, 10 तक हमको गिनती आई। बस इससे ज्यादा आता नहीं है, मतलब गिनती तो आती है, जोड़ गुणा भाग भी आता है, पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करना नहीं आता। अपना डब्बा खोले उसमें। बचपन में कॉमिक में पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो बस आज आप यही एक बात याद रखिएगा पूरे शो में, क्योंकि आज लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में हमारी शख्सियत इसी की जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने कंप्यूटर को भी फेल कर दिया, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस चुटकियां बजाते कर दी। उनको ह्यूमन कंप्यूटर का नाम दिया गया। कौन है वो, ये एक ब्रेक के बाद बताऊंगा। या चलिए, क्यों आपको सताया जाए, मैथ्स ही बहुत है सताने को। तो वो है शकुंतला देवी, जिन्हें गूगल भी ह्यूमन कंप्यूटर कहता है। मैं कहता हूँ शकुंतला देवी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, शुरू से ही शुरू करेंगे उनकी कहानी। आप सुनते रहिए समर की जुबानी।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगलू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
1: क्या?

0: बोलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
0: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: मानव कंप्यूटर और मेंटल कैलकुलेटर जैसे नाम से मशहूर इंडिया से मशहूर भारतीय गणितज्ञ शकुंतला देवी जी हैं आज हमारी लेजेंड। वेलकम बैक, मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज। एक कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली में आपका जन्म हुआ साल 1929 में बेंगलोर में। काफी गरीब फैमिली थी इनकी। पिता सर्कस में काम किया करते थे, वो रिंग मास्टर थे। साथ ही रस्सी से कूदना, ऊपर हवा में झूलना सभी करतब दिखाया करते थे। मगर इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपनी बेटी को स्कूल भी भेज सकें, जबकि फीस उस वक्त महज 2 रुपए थी। रहने को भी कोई अच्छा पक्का घर नहीं था, बल्कि एक कच्ची बस्ती में रहा करते थे। करना तो वो बहुत कुछ चाहते थे, वो अपना घर छोड़कर आए थे। वो सिर्फ 3 साल की थी तभी उनकी गणित की संख्या और अंकों के साथ दोस्ती हो गई, और इस बात को उनके फादर ने नोट कर लिया। वो सर्कस से आकर उनके साथ खेला करते, ताश का खेल खेला करते, मैजिक ट्रिक्स दिखाते, और नन्ही शकुंतला झट से उनको पकड़ लेती, धीरे धीरे उन्हीं को मात देने लगी। पिताजी को लगता बेईमानी तो नहीं करती, पर इतना नन्ना बच्चा तो इस शब्द के मायने तक नहीं जानता। उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की कि वो उन्हें हरा कैसे रही है। उनको जानकर यह हैरत हुई कि उनकी बेटी की मेमोरी इतनी तेज है कि उन्होंने कार्ड नंबर और सीक्वेंस को याद कर लिया पहले राउंड में। अगले राउंड्स में वो उस सीक्वेंस को गेस कर लेती, उसी के आधार पर फिर वो कार्ड पिक करती जो उनको जिता देता। न सिर्फ कार्ड्स का खेल, बल्कि वक्त के साथ वो मैथ्स के सवाल करने लग गईं। आस पड़ोस में कोई बच्चा होमवर्क कर रहा होता तो उसके गणित के सारे सवाल हल कर देती, जबकि वो स्कूल तक नहीं जाती थी। पिता को समझ आ गया था कि उनकी बेटी के भीतर कोई इनबिल्ट शक्ति है मेमोराइज करने की। मुझे तो ये कहते हुए लग रहा है कि उनके भीतर कोई सॉफ्टवेयर था मैथ्स का। सच में उस दौर में जब ना कैलकुलेटर हुआ करते थे, कंप्यूटर का तो सवाल ही नहीं उठता था, तो वो ऐसे कैसे हल कर लेते थे सवालों को पल भर में। कोई था ना सॉफ्टवेयर, वो गिफ्ट जो ऊपर वाले ने दिया था उन्हें। बस फिर क्या था, पिता की गणित की क्लास शुरू, वो उनको घर पर ही सिखाने लगे, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह। मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि पिताजी को भी बहुत गणित आती थी। तभी तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेने का मन हो रहा है, और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं इस कहानी को जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको सुनाता रहूंगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। आप मेरे यानी समर के साथ हैं, सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। और आज के इस सफर पर मेरे साथ हैं एक ह्यूमन जिनका दिमाग कंप्यूटर था, जिसे पूरी दुनिया ने माना। नाम शकुंतला देवी। उनकी मेमोरी पावर से उनके फादर इतने ज्यादा मुतासर हो गए, इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी की इस प्रतिभा को सबके सामने लाने का फैसला किया। शुरुआत में वो उन्हें सर्कस ले जाते और सबके सामने गणित के सवाल हल कराते, तो अपने आप में सर्कस में ये एक आइटम बन गया, क्योंकि वो सब कुछ झटपट कर लेती थी और भीड़ उनको देखकर खूब ताली बजाती। इसके बाद पिताजी ने वो सर्कस छोड़ दिया और बेटी शकुंतला ने रोड शोज करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते शकुंतला जी हो गई 6 साल की, और तभी उनको पहली बार एक यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। ये थी मैसूर यूनिवर्सिटी। बस फिर यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ से वो आगे बढ़ती चली गई। जब वो 20-22 बरस की थी तो पहली बार यूरोप गई। यूरोप की फेमस रेडियो बीबीसी में उनका एक शो था, जिसमें उनको एक बहुत मुश्किल कैलकुलेशन दी गई लाइव। ये उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में हल कर दी, जैसा कि वो नहीं था, लेकिन वहां बैठे इंटरव्यूअर और उनकी टीम ने जो कैलकुलेट किया वो अलग था। माने आंसर मैच नहीं कर रहा था। शकुंतला जी ने पक्का दावा किया कि उनका उत्तर ही करेक्ट है। इस पर सारे लोग फिर से सॉल्व करने लग गए, और जब वो लोग सॉल्व करते हुए अपना पुराना हल भी चेक कर रहे थे, तो मालूम हुआ कि वो शुरुआती स्टेप्स में गड़बड़ कर बैठे थे। तो उनको अपनी इस गलती का बहुत एहसास हुआ, और ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल गई। उस वक्त पूरा विश्व शकुंतला देवी को जानने लगा और उनको ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। इसके बाद तो इस यूरोप ट्रिप के दौरान उनको कई जगह से बुलावा आया, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने उनको बुलावा भेजा। सच में ये सुनकर तो लगता है कि गणित दिमाग का खेल है, जीवन का गणित भी तो ऐसा ही है। जाने कितना कुछ जोड़ते रहते हैं हम, जाने कितना कुछ घट जाता है जीवन में, और कितने गुना प्यार बढ़ जाता है जब आप लोग मुझे खत लिखते हैं, फेसबुक पर कह के जाते हैं मुझे कुछ ना कुछ। मेरे जीवन का वो भाग कितना प्यारा लगने लगता है, आपको मैं समझा ही नहीं सकता। अब आप क्या सोच रहे हैं, मैं गानों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ आपको। आइए जल्दी से कुछ लिख दीजिए हमारे फेसबुक पेज पर और इन गानों को एंजॉय कर लीजिए। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर शकुंतला देवी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की सुबानी।

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match. And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live Prata station, Singapore style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए, समर आ गया है, लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी के जिंदगी से कुछ किस्से चुनकर मैं ले आया हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप मुझे सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। एक और रेडियो से जुड़ा वाकया मुझे याद आ रहा है। एक दफा रेडियो पर उनका कार्यक्रम हो रहा था, एक औरत ने उनसे अपने 9 साल के बच्चे की बर्थ डेट बताकर पूछा कि उस रोज क्या दिन था जब वो पैदा हुआ, मतलब डे कौन सा था। अब शकुंतला देवी जी ने एकदम सही तारीख और वार बता दिया अपनी कैलकुलेशन से, मगर वो मोहतरमा बोली एकदम गलत। शकुंतला देवी जी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो श्योर थी, लिहाजा उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मेरा जवाब और कैलकुलेशन सही है। तभी वो औरत बोली लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे पता है। फिर क्या, शकुंतला देवी जी को बड़ा गुस्सा आ गया, चेहरा एकदम तमतमा गया उनका गुस्से में। बोली अगर मेरा जवाब गलत है तो मैं तुमको 1,000 रुपए दूंगी, ये गलत हो ही नहीं सकता। बहरहाल बात बिगड़ते देखकर आकाशवाणी के उस केंद्र के हेड बीच में आ गए और बोले मेरे पास पिछले 100 सालों का कैलेंडर है, मैं अभी देखकर बताता हूँ। जब उन्होंने साल दर साल तारीखें पलटी तो मालूम हुआ कि शकुंतला जी एकदम सच कह रही थी, उनकी कैलकुलेशन एकदम सटीक थी। जी हाँ, शकुंतला जी पिछली शताब्दी से पूछी गई तारीख के दिन और सप्ताह को बताने के लिए एक पल भी नहीं लेती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो कोई ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी भी तो अपने आप में कैलकुलेशन ही है, कहाँ कैसे कौन सा ग्रह नक्षत्र कौन सी राशि में प्रवेश करेगा ये सभी किसी कैलकुलेशन से कम नहीं है, ये भी उनको आता था। जी तभी तो उन्होंने इस पर भी किताबें लिखी जैसे एस्ट्रोलॉजी फॉर यू। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक फॉर यू आ रहा है, आप ये फेबुलस गाने सुनकर वापस लौट कर आइएगा, ब्रेक के उस पार में आपसे मिलूंगा। मेरा नाम है जवार, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर शकुंतला देवी जी के जिंदगी के अनछुए पहलू हम छू रहे हैं आज। कुछ ऐसे किस्से जो आप जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे किस्से उनकी जिंदगी के जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: Raaz ki baat bataun. मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: शकुंतला देवी जी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। जिन लोगों ने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया, मैं उन्हें बता दूं कि आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी गणित की विद्वान की कहानी है, जिनका नाम है शकुंतला देवी। जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली तब भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हल कर दी, वो भी चुटकियां बजाती। एक दफा एक पेपर के जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान उनसे एक गणित का मल्टीप्लिकेशन का सवाल हल करने को कहा। एक तरफ 5 डिजिट्स थी और दूसरी तरफ 6। वेल, मैं भी जानता हूँ कि आप मेरी तरह ही श्योर हैं क्या हुआ होगा। झट से शकुंतला देवी ने जवाब दे दिया होगा। दे दिया पक्का। जर्नलिस्ट महोदय गच्चा खा गए, वो अड़ गए कि इसका जवाब ये नहीं होगा। आखिरकार इसी सवाल को हल करने के लिए यू वोंट बिलीव उसी अखबार के अकाउंट्स के लोगों को बुलाया गया। कैलकुलेटर पर आंसर को चेक किया गया। ऐसी कई परीक्षाएं शकुंतला देवी जी को बार बार देनी पड़ती थी। ये साल 1977 की बात है, 1977 में सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी डलास से उनको बुलावा आया। वहां एक 201 डिजिट नंबर का 23rd रूट उनको निकालने को दिया गया। शकुंतला देवी ने इसे महज 50 सेकंड में हल कर दिया, जबकि वहां मौजूद प्रोफेसर को सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखने में ही कोई 4 मिनट लगे थे। ये खबर अगले रोज हर अखबार में थी। एक दफा एक इंटरव्यू में इस बात का राज पूछा गया कि क्या आपको सीधे ही मतलब पहले से जवाब पता होता है या आप स्टेप बाय स्टेप सवाल हल करती हैं। इस पर उन्होंने कहा, स्टेप बाय स्टेप, सारी स्टेप्स वो लिख भी सकती हैं। मतलब मैं क्या बोलूं साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 50 सेकंड में जवाब और वो भी स्टेप बाय स्टेप, मतलब कमाल है। मुझे यहां जरूर एक ब्रेक की दरकार है। कुछ तो मैथ्स मुझे भी सीख लेनी चाहिए ऐसा लगता है मुझे अब। हां, कुछ गाने सुनते हैं मैथ्स से अलग, कुछ सुरों में उलझते हैं। मैं हूं समर, रेडियो 24/7 लाइव पर सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है एक ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जी की। एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ ही वो ज्योतिष शास्त्र की जानकार भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट थी, सोशल एक्टिविस्ट और लेखिका भी रही हैं शकुंतला देवी जी, हमारे आज की लेजेंड। साल 1977 की बात हमने आपको बताई थी और इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। ईयर 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में उन्होंने 13-13 अंकों की दो संख्याओं को बिल्कुल सही गुणा कर दिया और मात्र 28 सेकंड्स में। ओ माय गॉड, आपको मैं बताता हूँ ये नंबर्स क्या थे। नहीं, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, सॉल्व नहीं करने को कहूंगा आपको, और अगर आप नंबर से ही घबरा जाए तो देखिए फिर कोई इलाज है नहीं मेरे पास। ये नंबर से, ये संख्या थी 7686369774870 और 2465099745779, जिनको कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किया गया था और इन्हें गुणा करने पर 18947667177995426462773730 संख्या मिलती है। ओ माय गॉड, आप गैस कीजिए इसके बाद क्या हुआ होगा। अजी जनाब, रिकॉर्ड और क्या, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 1982 एडिशन में इस बात को, इस सवाल के जवाब को जगह मिल गई। देखिए अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ एकदम से, मैं तो पहले शकुंतला जी की लिखी किताबों को ही पढ़ूंगा, वहीं से सीखूंगा मैथ्स। हाँ जी, उन्होंने मैथ्स की कई किताबें लिखी हैं, कई किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चे पढ़ते भी हैं, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो बच्चे इनकी किताब को भी पढ़ते हैं। लेकिन इनकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले इनकी एक और किताब पर डिस्कस कर लेते हैं, वो थी द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। जी, ये किताब उन्होंने क्यों लिखी, आखिर ऐसा क्या था, उनकी जिंदगी के एक और पहलू से आपको मिलवाऊंगा एक ब्रेक के बाद। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। रेडियो 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: लीजिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपको सुना रहा हूँ ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जी की कहानी। मैंने उनकी किताब का जिक्र किया था ब्रेक से पहले, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। देखिए, गणित के विषय में शकुंतला जी की अद्भुत प्रतिभा और सवालों को हल करने की उनकी गति का कोई सानी नहीं था, ये सच है। मैं खुद उनके बारे में पढ़कर उनका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। मगर जैसा कि मैंने कहा कि एक और विषय ऐसा था जिस पर उन्होंने कुछ किया लिखा और उसके लिए उन्हें बहुत याद किया जाता, और वो था होमोसेक्सुअलिटी। और ऐसे सब्जेक्ट को, एक ऐसे टॉपिक को सपोर्ट करना, और वो भी तब जब इन सबको बहुत खराब माना जाता था सोसाइटी में, लोग खुलकर बात भी नहीं करते थे, तब इन्होंने समलैंगिकता के समर्थन में संघर्ष किया। दरअसल हुआ ये कि 60s के डेकेड के मिड में शकुंतला जी लंदन से लौटी और उन्होंने कोलकाता के एक IAS ऑफिसर परितोष बैनर्जी से शादी कर ली। इनकी लाइफ ठीक चल रही थी, इनके हस्बैंड बहुत बड़े ऑफिसर थे, लिहाजा इनको कहीं भी बाहर शो करने देना वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ऑल्दो ही वाज अ गुड मैन, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं चला इन लोगों की लाइफ में। काफी साल साथ भी रहे। इस बीच जब 1977 में शकुंतला जी की किताब आई होमोसेक्सुअलिटी पे, तो इसके 2 ही साल बाद दोनों का तलाक हो गया। दरअसल इनके पति भी होमोसेक्सुअल थे, उनको इस बात का सदमा भी लगा, पर शकुंतला इस सबसे ऊपर उठी और उन्होंने न सिर्फ अपने पति को समझा बल्कि भारत में इस समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने अपने लेवल पर समलैंगिक समुदाय के लोगों से बात करके उनके बारे में जानना शुरू किया, उनसे बात की, उनसे पूछा कि वे समाज से क्या चाहते हैं, और उनके अनुभवों को लिखा अपनी किताब में। यह किताब भारत की पहली किताब थी जो इस विषय पर लिखी गई थी, पहली बार किसी ने यह काम किया। खैर, आज इस बात को बहुत साल बीत गए हैं, उनकी इस आवाज को उठाने के कई सालों बाद इंडिया में भी अब होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता मिल गई है। तो चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम और बात करेंगे शकुंतला देवी जी की। अच्छा, उन्होंने एक और किताब लिखी थी, अ परफेक्ट मर्डर, जो एक क्राइम स्टोरी है। ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करेंगे। सुनते रहिए समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव और लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में शकुंतला देवी की कहानी, मेरी जुबानी।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक। ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। मैं हूं समर आपके साथ। उन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब के जरिए उन्होंने समलैंगिकों के संघर्ष को समाज के सामने रखने की कोशिश की। भले ही उस समय उनकी बातों और विचारों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी, लेकिन आज उनका नाम उन लोगों में शामिल होता है जिन्होंने देश में समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने लिखा, इस किताब को लिखने के लिए मेरी योग्यता सिर्फ यही है कि मैं एक इंसान हूं। इसके साथ ही उन्होंने समलैंगिकता के लिए किसी सहानुभूति की नहीं बल्कि पूर्ण रूप से स्वीकृति की बात की है। पति से अलग होने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान किताबें लिखने पर केंद्रित कर लिया। उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना अपनी सारी की सारी नॉलेज को किताबों के जरिए लोगों को सौंपा जाए। खासकर बच्चों के लिए उन्होंने किताबें लिख डाली। उन्होंने बच्चों के लिए इस विषय को दिलचस्प बनाने के लिए खास टेक्स्ट बुक्स भी लिखी, द जॉय ऑफ नंबर्स, जिसमें एक छोटी सी पोयम लिखी थी उन्होंने कि मोर ऑन टॉप, नो नीड टू स्टॉप, मोर ऑन द फ्लोर, गो नेक्स्ट डोर एंड गेट 10 मोर, नंबर सेम, जीरो इज द गेम। सो ये तरीका था उनका बच्चों को सिखाने का। इसके अलावा एक पजल की किताब कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी उनकी किताब बहुत मददगार साबित होती हैं। एनालिटिक्स स्किल्स सुधारती हैं। उनकी वैदिक मैथ्स और मैथ्स की टेक्निक्स की वर्कशॉप्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही हैं। और उन्होंने सोसाइटी की सेवा के लिए शकुंतला देवी एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिक ट्रस्ट भी बनाया। शी एनकरेज रिसर्च इन वैदिक मैथमेटिक्स एंड हेल्प स्प्रेड ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। अच्छा हाँ, मैं आपको उस किताब के बारे में बताना भूल गया जो किताब उन्होंने मर्डर के बारे में लिखी थी, और उन्होंने एक सच्ची मर्डर की घटना पर लिखी थी। वैसे उनके इतने शानदार दिमाग को देखकर मुझे तो लगता है कि उनको CID में होना चाहिए था। नहीं, इस सवाल का जवाब आप हमारे फेसबुक पेज पर लिखकर भेज सकते हैं कि उनके इस शानदार दिमाग से और क्या क्या हो सकता था। मैं इंतजार करूंगा। गाने आ रहे हैं, फिलहाल आपका इंतजार कर रहे हैं। ये इन्हें मैं रिलीज कर रहा हूँ, इन्हें सुनिए, मजे लीजिए और वापस लौट कर आएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर कर रहा है आपका इंतजार।

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match. And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
2: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा?
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। Time to raise the bar. रम्मा। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: Radio Masti 24/7 live par. Summer ke saath, aap sun rahe hain Legends Achievers.
4: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, और शकुंतला देवी हैं हमारी आज की लेजेंड, जिन्हें हमारे आज के इस शो में याद कर रहे हैं हम। वो जीनियस माइंड। कोई भी परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले उनको एक घंटा बहुत शांति चाहिए होती थी, फोकस करने के लिए। और इसके बाद जब भी वो स्टेज पर आती, अपनी फ्लोइंग साड़ी, सोने के आभूषणों से लकदक, बहुत इजी दिखती, कोई स्ट्रेस नहीं, कूल एकदम। वो स्टेज पर आने के बाद किसी को भी उठाकर बर्थ डेट पूछती और उसका दिन और वार बता देती। पहले उनको नंबर्स के बीच कभी कॉमा लगाना पसंद नहीं था। कोई ब्लैक बोर्ड पर वैसे लगाता तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं उनको हिंड्रेंस लगता था। वो बस नंबर्स का फ्लो देखना चाहती थी। बीबीसी पर उनके शो के वक्त उस शो के होस्ट डेविड फ्रॉस्ट की चुटकी भी ली थी उन्होंने। सवाल हल करने के बाद उन्होंने पूछा था, यू हैव गॉट इट? उन्हें भी पता था कि डेविड को भी नहीं मालूम आखिर सब सॉल्व कैसे हुआ। वेल, बाद के कुछ सालों में वो एस्ट्रोलॉजी करने लगी थी बेंगलोर में रहकर। उनकी बेटी अनुपमा बनर्जी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन में वो 60-60 क्लाइंट्स देखा करती थी होटल के कमरे में। मींस उनकी एस्ट्रोलॉजी, शादियां काम करेंगी या नहीं, बच्चा होगा या नहीं, बेबी गर्ल या बॉय, बिजनेस चलेगा या नहीं, कई ऐसे सवालों के जवाब और लोगों को हल भी बताती थी। अच्छा, इसके अलावा वो बहुत अच्छी परफॉर्मर भी थी। उनको मालूम था कि किसको क्या जवाब देना है। एक दफा मास्को में एक टीवी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि वो प्रिडिक्ट करके बताएं कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड कितना कमाए। इसका झट से शकुंतला देवी जी ने जवाब दे दिया, यू वॉन्ट योर हस्बैंड टू हैव मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस। और इसके बाद मुस्कुरा कर बोली, एम आई करेक्ट? होस्ट भी हंसने लगी, क्या करती, शायद ब्रेक लिया होगा उसने उस वक्त। तो चलिए मैं भी एक ब्रेक ले लेता हूँ। गानों का ही मस्त म्यूजिकल ब्रेक है, इसे सुनकर वापस जरूर आइएगा, क्योंकि कहानी में अभी कुछ बचा है जो मैं आपको बताऊंगा आज की आखिरी मुलाकात में।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
6: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: वेलकम बैक। ब्रेक के इस बार आपका फिर से स्वागत है। भारत की महान गणितज्ञ शकुंतला देवी जी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। शकुंतला देवी जी जो एक ऐसे परिवार में जन्मी जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परफॉर्मेंस के फील्ड में ही रही। उनके फादर खुद एक परफॉर्मर थे, सर्कस में काम करते थे, रिंग मास्टर थे। शकुंतला देवी जी में भी यही जीन्स आए। वो स्टेज पर आती तो सबको अपनी परफॉर्मेंस में खो जाने को मजबूर कर देती। कभी कभी चाइल्डहुड फेम बच्चों को काफी अलोन फील करा देता है, मगर शकुंतला जी के साथ उनके नंबर्स थे ना, अकेली कहाँ थी वो। उनको हर जगह वो दिखाई देते थे, गाड़ियों की नंबर प्लेट में, ग्रोसरी स्टोर में, टेलीफोन बुक में, टेलीफोन डायरेक्टरी में, हर जगह मैनिपुलेट करती रहती, वो रीअरेंज करती रहती, उनके इक्वेशंस बनाती। वो अपने साथ की बड़ी होती हुई लड़कियों से भी अलग थी, एकदम अलग। जब लड़कियां प्यार में पड़ रही थी, ये नंबर से अपना इश्क लड़ा रही थी। अडल्ट हुई तो बस घूमती रही, एक देश से दूसरे देश, लगभग 120 देशों की यात्रा की उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी किसी चीज की शिक्षा नहीं ली, मगर तब भी वो सब कर पाई। मैथ्स परफेक्ट थी, इंग्लिश की कभी पढ़ाई नहीं की, मगर किताबें इंग्लिश में लिखी। सच्ची है, डिग्री से ज्यादा जरूरी है नॉलेज, जो शकुंतला देवी के पास थी। इसीलिए तो उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। लेकिन 21 अप्रैल 2013 को वो हम सबको छोड़कर चली गई। ऐसी महान शख्सियत को रेडियो मसी 24/7 लाइव का पूरा परिवार नमन करता है, सल्यूट करता है, सलाम करता है। चलिए आज की कहानी यहीं तक, फिर एक नई शख्सियत के साथ उसकी कहानी के साथ मैं मिलूंगा बहुत जल्द यहीं पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और जाते जाते करते जाइए कुछ वादे। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार, जहां

मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे।

वाहे। बीवी बिगड़े शौहर अकड़े रोज के झगड़े रोज के लफड़े लफड़े झगड़े।

पी के आया दरवाजे पे फिर चिल्लाया उस दिन बीवी बन गई भोली कुंडी खोली हंस के बोली जाने तमन्ना अंदर आओ पहले तो कुछ खाओ आओ फिर बिस्तर पे होंगी बातें बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए, प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: ना पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
2: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Jump.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: पूछा कि करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
1: तारे

0: मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: Tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti, 24/7 Live.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us

0: माय माशुका रेडियो मसी 24/7 पर सुबह सुबह ना कोई भगवान का नाम, हर बार आके मैं यही बोलती हूँ और ये अंतरा है फिर माशुका जैसे गाने, उफ क्या होगा इसका।
1: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: इसे कहते हैं फ्राइडे का ट्रांजिशन, जो कि बहुत जरूरी होता है। जब आपको पता चल जाए लास्ट भक्ति गीत के बाद, जैसे ही ऐसा आए कि भाई ये क्या हो गया, फ्राइडे, इट्स फ्राइडे।
0: हाँ भाई, तो बल्ले बल्ले फ्राइडे बैसाखी के म्यूजिक के साथ में शुरू करते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम वन, वेलकम ऑल, दिस इज मस्ती मैडनेस एंड ऑफ कोर्स मस्ती मैडनेस पर द मैड मैड मैड डुओ व्हिच इज अंतरा एंड रेणुका ब्रिंगिंग टू यू द वियर्डेस्ट खबरें फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यों भाई अंतरा, शुरुआत में आपको लगता है कि हमारी आज तैयारी पूरी है या नहीं है?
2: हमेशा हमारी तैयारी कब नहीं पूरी होती है। आई मीन आई कैन ओनली से विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि पहले एक बीच में टाइम आया था जहां पर हम एक दूसरे से कहते थे कि आजकल खबरें नहीं आ रही है ना, ज्यादा नहीं आ रही है। राइट नाउ इट इज आई थिंक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ही आ रही है।
0: आई एग्री, आज का शो मैं 6 घंटे का भी कर सकती हूँ क्योंकि इतनी खबरें हैं कि पूछो मत, मजा आने वाला है। एंड यू नो व्हाट अंतरा, तेरा लोहा बदन कौन बोलता है इसे? पता है मैंने हाल ही में ये भी रियलाइज किया है कि अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, ओके, व्हेन दे से ओ अच्छा यू आर ऑन द शो, अच्छा इस टाइम यू आर ऑन द शो, उस दिन मजा आया कि हम सारे के सारे बैठे हुए थे एंड सडनली कोई ऐसा टॉपिक आया तो उन्हीं में से किसी ने बोला अरे ये तो फ्राइडे मॉर्निंग के शो में जा सकता है। मैंने कहा तुम तो सुनते नहीं थे, क्या हुआ?
2: जी
0: तो
2: बिल्कुल ऐसे पकड़े जाते हैं,
0: बिल्कुल। तो अब यही बात है, करते सब है, बताता कोई नहीं है,
2: कोई नहीं है।
0: रेडियो मस्ती 24/7 पर आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं किसी को, ठीक है? ये वाला गाना
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: बहुत गर्मी, क्या करें इस गर्मी में, बताओ ना।
2: हाय हाय हाय, गर्मी है, कहाँ है सांसों में, यू रिमेम्बर दो सॉन्ग्स,
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज़ भी होती है,
2: हाय हाय हाय, तूफान है, कहाँ है सीने में, ओह माय गॉड, कहाँ से आते हैं ये, कहाँ से, गुड मॉर्निंग।
1: पहले ना मेरे को समझ में नहीं आता था, जब ये जो ओवर ड्रामेटिक मूवीज होती थी कि उसमें ना जब भी ये लोग प्यार की बात करते हैं तो ये इतनी जोर जोर से सांसें क्यों ले रहे होते हैं एक दूसरे के सामने, लाइक व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द टू, लाइक How it was, it never used to make sense to be कि मतलब इतना जोर जोर से कि मतलब even तो छाती ऊपर नीचे हो रही है पूरी सांस।
2: ओके, सो द अदर डे, आई नो तेरी न्यूज है बट वी लीव दैट न्यूज फॉर द नेक्स्ट टाइम, ओके। लेकिन पता है क्या हुआ उस दिन, व्हेन आई वाज विद माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड सडनली देयर वाज अ कॉल दैट केम, ओके, एंड दिस वाज ऑब्वियसली मोबाइल पे कॉल आ रहा है, नंबर सामने, सब कुछ, मैंने उठाया, कोई बोला नहीं, सो शी लुक्ड एट मी एंड आई लुक्ड एट हर, आई सेड ब्लैंक कॉल, यस, यू नो, आफ्टर सो लॉन्ग, शी सेज यू रिमेम्बर जब हम एक दूसरे को कॉल्स करते थे उस टाइम पर, हाँ, मतलब एक दूसरे में किसी को भी, तो हम कभी कभी कोई सामने वाला बोलता नहीं था, कभी सिर्फ सांसों की आवाज आती थी।
1: आई नो, यस यस, एग्जैक्टली दैट, आई मीन मतलब हमारा, अच्छा, माय बॉलीवुड क्रेज वाज सो मच, यू रिमेम्बर हम आपके है कौन में, देयर इज लेटर हाफ में एक सीन है जब माधुरी दीक्षित सलमान खान एक दूसरे को फोन पे होते, माधुरी दीक्षित बच्चा बकरी होती है एंड जोर जोर से ऐसे ऐसे करके सांस ले, मैं ना, मुझे लगता था कि प्यार ऐसे ही होता है, जब तक आप ऐसे सांसें ना लो ना, when you are not in love, if you don't, never have done it. So I was like, when I am in love, मेरे को भी ऐसे जोर जोर से छाती ऊपर नीचे वाली सांसें लेनी है, तभी तभी प्रूव होगा कि मैं प्यार में हूँ।
2: तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम इफ यू सी मी एंड तेरी जोर जोर से ऊपर नीचे चेस्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है यू डोंट लव मी। हाई हील्स पे नचे और जोर जोर से सांस ले, यही है, अगर कोई सामने वाला आपको ऐसे देख के नहीं कर रहा है, मतलब दैट पर्सन डजंट लव यू अकॉर्डिंग टू अंतरा।

0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर. छोड़ो, यहाँ अंतरा जोर जोर से अभी भी सीने में गर्मी जोर जोर से सांसें ले रही है, उसको प्यार हो गया है मुझे लग रहा है.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
2: अब ये सासे सिर्फ जिम में आती है, पता नहीं नाउ व्हाट टू मेक ऑफ इट, बट देन दिस इज व्हाट द रियलिटी इज राइट नाउ. कमिंग बैक टू द खबर, भाई जापान में पड़ रही है सॉलिड मस्त वाली गर्मी. यू रिमेम्बर इन वन ऑफ द एपिसोड्स वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ यू नो द वुमेन वर सेइंग कि भाई इनको तुमने शॉर्ट्स में बुला लिया है, हमें तुम हमारा ड्रेस कोड चेंज नहीं कर रहे हो, गर्मी क्या सिर्फ इनको लग रही है. तो भाई आई थिंक जापान हैज काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट और उन्होंने कहा कि कुछ और भी करते हैं. ऐसा क्या है? अब उन्होंने जो है ह्यूमन रेफ्रिजरेटर्स लगा रखे हैं जापान में जगह जगह.
0: अच्छा, ह्यूमन रेफ्रिजरेटर्स, तो क्या अंदर घुस के बैठ जाते हैं शेल्फ पे या क्या करते हैं? अंडों वाली जगह पे बैठ सकते हैं?
2: बहुत ही विशफुल थिंकिंग है ये, एटलीस्ट मेरे एंगल से. रेणुका तो जैसे तैसे करके फिट हो भी जाएंगी, मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है. या वो टेढ़ा मेढ़ा होकर जो है ना वो बिल्कुल उसमें जैसे तैसे करके शी कैन फिट. सो बेसिकली ये जो टेम्परेचर इसमें रहता है 15 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक मीठा मीठा बना रहता है. जब आप बहुत ज्यादा मतलब यू नो इसमें एक कॉइन डालो, दरवाजा खुल जाता है, अंदर जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठो, जस्ट यू नो थोड़ा गर्मी पसीना वसीना सुखाओ, थोड़ा सा नॉर्मल करो, फिर बाहर निकलो, फिर अपना चलते बनो. एंड इट इज लाइक प्लेस जगह जगह पर.
0: ओ वाओ, क्या उसमें अंतरा उसमें दो लोग जा सकते हैं एट अ टाइम? बताओ,
2: मुझे पता, मुझे पूरा
0: यकीन. लेट माय बॉडी लूज, क्या बोल रही हो तुम?
2: मुझे पता था, मतलब हमारे दिमाग जो है ऐसे चलते हैं. मुझे भी ये लगा था कि ये अगर अभी इंडिया में खुला होता तो अभी तक ये एक डेटिंग स्पॉट बन गया होता.
0: यार व्हाई नॉट, मैं एक्चुअली मैं तो कम्युनिटी सर्विस सोचती हूँ हमेशा, तो मुझे लगा देखो एक से भले दो यू नो ज्यादा लोगों का फायदा हो जाएगा, क्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम भी ना सब गलत ही सोचते हो तुम.
2: नहीं नहीं, वो जो हीट अंदर बढ़ेगी उसका क्या, रेणुका?
0: हाँ बस, तो टेम्परेचर और लो करना पड़ेगा और कुछ नहीं.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: और मध्य प्रदेश में एक सांप ने डिसाइड किया कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करेगा। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
2: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी है।
3: सांप को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है?
1: हाँ
3: भगवान,
1: मतलब ऐसा कंपटीशन का जमाना आ गया है कि एक 24 साल की महिला को इस सांप ने हाँ। 2 मिनट में 5 बार काटा। पूछो भाई क्या हो गया, आराम से। क्या ऐसी भी क्या तेरे अंदर की जहर की आत्मा जागी है कि तू काटे जा रहा है, 2 मिनट रुक जा। सो बेसिकली ये औरत जो है 24 साल की राधाबाई आहिरवार, ये झाड़ू लगा रही थी अपने किचन में, ठीक है, और वहां पे 5 फुट का बड़ा सा लंबा सा काले रंग का एक सांप उसके बर्तनों में छुपा हुआ था। तो जब उसने अपना हाथ कबर्ड के वहां पर हिलाया तो उस सांप ने उसके राइट पाम पर मार दिया, ठीक है, डंक। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने शी ट्राई टू शेक ऑफ द रेप्टाइल, राइट, जो उसके हाथ के पास आ रहा था, तो वो मरता गया। 5 बार उसने उसको बाइट किया इन लेस देन 2 मिनट्स। भाई क्या हो गया, मतलब सांप, ऐसी भी क्या बात हो गई, क्या हो गया? फिर उसके बाद एनीवे उसको लेके गए, क्या हुआ,
3: लहू मुंह लग गया।
1: ये लकी एंगल पे आज के दिन में सांप भी घूमते घूमते उसने सोचा कि एक बार काटता हूँ फिर दूसरी बार। देखो याद है जैसे मैंने अभी सुबह सुबह गाना गाया था सांसों वाला, है ना, वैसे ही काटते नहीं कटते ये दिन ये रात,
2: इसमें भी था वो
1: है ना,
2: सांस वाला,
1: वो ही सांस वाला, राइट, ऊपर नीचे, यू नो। अब देयर्स अ लॉट फॉर मी टू से राइट नाउ, बट आई थिंक off mic and we should talk otherwise, but going back to the woman, she was rushed to the hospital aur uske baad of course karna kya chahiye agar aapko saamp saamp ne kaat liya to bhai aisa hai ki aap time mat waste kijiye ki hum purane zamane ki koi totke lagayenge, seedha hospital jaiye aur jo aapka bitten wala limb hota hai na, just to give some knowledge also to people, jahan par bhi kaata hota na usko heart level se niche rakhiye kyunki that will slow down the spread of venom, okay, याद रखना ये बात। हाँ, और रिमूव,
2: बॉलीवुड इज नॉट अ वेरी डिफरेंट रोमांटिक टेक्निक ऑफ डूइंग इट,
1: किस करने की जरूरत नहीं है और ना ही
2: चूस के निकालेंगे,
1: प्लीज डोंट ट्राई ऑल दैट, ओके, सीधा हॉस्पिटल जाना, लेट द डॉक्टर चूस और व्हाटएवर दे हैव टू डू, ओके, गुड मॉर्निंग।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: स्पैम कॉल से क्या आप हो परेशान? भाई ब्रिलियंट आइडिया लेकर आए हैं. ब्रिलियंट.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: वैसे तो अगर हमें कोई बोले ना कि सुबह 7 बजे उठ के काम पे चले जाओ, ये काम है वो काम है, तो नहीं जी नहीं, हमसे ना होगा. लेकिन हमारे से सुबह सुबह फ्राइडे को आइडियाज लेने हो तो वो ब्रिलियंट से कम नहीं निकलते. वैसे क्यों भाई, गुड मॉर्निंग
2: भाई. ये शो ही कुछ ऐसा है कि नॉट ओनली इट गिव्स अस ऑल दीज अतरंगी खबर्स, बट इट आल्सो गिव्स अस जीनियस एंड ब्रिलियंट आइडियाज एज वेल. साथ साथ में मिस्टर ली है इनका नाम, एंड जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अस, तो आपको पता ही है कि अगर आपने स्पैम कॉलर्स को और इस तरह की चीजों को ब्लॉक नहीं कर रखा है अपने फोन पर, तो मतलब भर भर के आते हैं. And if you have been in India, if you have an Indian number, वहाँ तो बिल्कुल free fund में आते हैं, like every day. So well, तो he this guy was also Mr. Lee भी बहुत परेशान थे spam calls से. So instead of just blocking the calls, he came up with this genius solution. Okay, तो इन्होंने क्या किया कि ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ही purchase this premium rate का phone number. Now what this premium rate का phone number does is it is भाई जो 90s में जैसे इनकमिंग चार्जेबल होती थी ना, तो बेसिकली जो भी आपको कॉल कर रहा है वो कॉलर को पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं टू रिमेन ऑन द लाइन. एंड ही एक्चुअली नाउ इमेजिन द स्पैम कॉलर इज कॉलिंग यू, टॉक टू हिम. भाई बंदा कमा रहा है उल्टा
4: वो बात करने से.
2: Yeah, incoming. So he updated his detail and everything, filled out forms naye number ke saath. Now when they did, the company behind the calls were billed by the minute with this portion of those fees which is paid back to Mr. Lee.
4: कमाल है यार.
2: Through a revenue sharing program. And जब भी कोई sales person call करता है, Lee कहता है मैं तो बात करता हूँ, मैं बहुत देर तक बात करता हूँ.
4: क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं. नॉट टू बैड. हाँ, आई लाइक दिस. आई एक्चुअली क्वाइट लाइक दिस. तो भाई अगली बार आपको कोई ऐसे फोन करे ना, सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप उसको डांटना मत, आप बातें करना, है ना? एग्री.
2: टॉक अबाउट बैकअप प्लान. प्लान ए बी ये है, ए पॉइंट टू.
4: Yeah, this is passive income. Next level. कमाओ,
2: next
4: कमाओ.
2: level.
4: कमाओ. वेल ले लोग, I tell you.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट।

0: भाई हद ही हो गई है, हद ही हो गई। हमारे दूसरे घंटे में खैर आपका तो स्वागत है ही, लेकिन हद ही हो गई अंतरा इस खबर में तो।
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है इतनी सारी हदें यहाँ पे लगा दी है। कौन सी हद हो गई है पार, बताओ बताओ।
0: यू नो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हुई है हाल ही में, राइट? यू नो दैट,
1: राइट?
0: अब भाई सारे लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। पुराने जमाने में प्रॉब्लम्स यूजुअली क्या होती हैं हॉल्स में, पुराना क्या आपके जमाने में भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, या तो किसी का फोन बजता रहता है, या लोग बातें करते रहते हैं, या यू नो डिस्टर्ब करते रहते हैं। बट ये जो कोलंबिया में हुआ वॉज द अल्टीमेट। वहां पर मूवी के बीच में निकालना पड़ा लोगों को बिकॉज somebody was farting, and इतनी जोर जोर से farting हो रहा था कि वो flatulence जो था पूरे हॉल में फैल गया, और उसके बाद में there was no way to stop, so they had to stop the movie and they had to tell everybody to evacuate क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। रब्बा मी बरसा मी, मुझे पता है ये तुम्हारी पास भी खबर थी और वो लूटी जा चुकी है, लेकिन अब इसके बारे में बताओ तुम कि तुम्हारा विचार क्या है। अगली बार आपको लगता है कि ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप होने चाहिए हॉल्स में भी?
1: इट्स अ गुड आइडिया। इस स्टूडियो में से अगर मुझे रेणुका को एग्जिट कराना हो तो आई कैन यूज दिस ट्रिक टू डू सो। 120 से भी ज्यादा, 200% शी विल गो आउट।
0: लेकिन तुम सोचो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा अगर स्टूडियो में फ्लॉट्यूलेंस का अटैक होता है किसी को। इमेजिन
1: जी,
0: जस्ट इमेजिन शो करते करते बीच में वो खुशबुएं।
1: एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, वी हैव नेवर फेस्ड दिस।
0: नो, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू कम टू थिंक ऑफ इट, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट।
1: नो, या सो बड़ा ही लाइक वी कैन एक्चुअली, आई रियली वांट टू ट्राई, लाइक यू नो, डोंट यू वांट टू सी रेणुका'स एक्सप्रेशन ऑल ऑफ अ सडन। सोचो कि हम लोग अभी मस्ती मैडनेस कर रहे हैं एंड आई यू नो फ्लॉट्यूलेंस की हवा जो है मैं यहाँ पे छोड़ू। रेणुका ऑन एयर है, माइक ऑन है, क्या करेगी रेणुका?
0: रेणुका माइक पे बोल देगी कि अभी अभी इसने ये जो हरकतें करी हैं इससे दूर रहो। तू सोच ले, मैं नेम एंड शेम करने में विश्वास रखती हूँ जहां मेरे ऑक्सीजन का सवाल है, एंड नॉट ओनली मी बट द होल वर्ल्ड, ऑल आर लिसनर्स विल नो अंतरा का पेट खराब है, फ्लॉट्यूलेंस इज एग्जिटिंग। ओके, डोंट ट्राई इट, नॉट विद मी।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: पैर धो धो के पिएंगे ऐसा कहा जाता है, बहुत फेमस कहावत है, धो धो, इतना बढ़िया काम, ये ऐसा इंसान है इसके तो पैर धो धो के पीने चाहिए।
2: आई नो, दैट इज सो वियर्ड।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: तो भाई ऐसा है कि रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है मसी मैडनेस और इस समय पैर धो के पीने की बातें हो रही है यहाँ पर। लेडीज एंड जेंटलमैन सुनिए,
1: ये बात तो होती है इंडिया में लेकिन इसको अप्लाई किया जा रहा है ग्वांगझो चाइना में। भाई वहां पे हुआ ये एनिमे का कन्वेंशन, ठीक है। तो एनिमे के कन्वेंशन में ये कॉस्प्लेयर्स होते हैं जो एकदम फुल एकदम एनिमे के कैरेक्टर्स की जैसे तैयार होके आते हैं एंड एवरीथिंग। अब इन्होंने अपने स्टॉल को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, कुछ ये एनिमे के कैरेक्टर्स, वो जो वो वाले बक्से नहीं होते आइस वाले बॉक्सेस जिसमें हम लोग यूजुअली सारा जो ठंडा रखने के लिए ड्रिंक्स वगैरह लेकर जाते हैं, सो उसमें इन्होंने बनाया जो है समर्स के लिए जूसेस। एंड उसमें हमारे जो कॉस्प्लेयर्स है जो कि ये एनिमे कैरेक्टर्स बन के घूम रहे हैं वो अपने अपने लड़कियां जो है पैर डुबो के बैठी हैं। एंड भाई बंदे आ रहे हैं, बंदी पैर डुबो के उसमें से जब जूस गिर रहा है, बंदा नीचे घूम रख रहा है उससे जूस पी रहा है, व्हाट इज हैपनिंग गाइस, लाइक व्हाट इज दिस।
2: नहीं, दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ गेटिंग चीज़। Before the bang bang, Radio Masi 24/7 पर चल रहा है आजकल के पागलपन का आपके साथ में sharing. So are you serious?
1: ये कैसा fetish है? I mean, मतलब I understand you are a fan, but then this how? अच्छा different type है कि कभी कभी कोई anime के cosplayer पैर निकाल निकाल के juice drop कर रही है, कुछ लोग आके जिसमें उन्होंने पैर डुबो के रखा है आके अपने glasses भर भर के लेके जाके पी रहे, क्या कर रहे हो भाई, hygiene के सारे lessons भूल गए जो school में पढ़े थे।
2: Hygiene doesn't matter when you're in love with somebody, सिर्फ तुम्हारा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होता और तुम पानी पी लेते हो जिसमें उसने पैर रखा हुआ। ओके, कांट हैंडल दैट।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: हाँ तो भाई, अगर कोई भी है यहाँ पर इंसान, लड़कियाँ जो कि शादी करने के लिए ढूंढ रही हैं एक अच्छा वर, तो भाई अगर आप सेटिस्फाई करते हो ये वाला क्राइटेरिया तो सोचो, चट मंगनी पट ब्याह रेडी बिल्कुल। और अगर नहीं हो तो क्राइटेरिया तो सुनी लो।
2: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
3: This gets my attention so soon. भाई आजकल के हर किसी के क्राइटेरियाज इतने यूनिक हो चुके हैं कि योर माइंड गेट्स ब्लोन कि भाई ये तो बहुत ही कमाल है।
1: Totally a highly misogynistic post. That's what I would call it. तो भाई एक इंसान, एक लड़का ढूंढ रहा है एक लड़की शादी करने के लिए, ओके। पर आप उसकी मेंटालिटी अगर देखेंगे, उसकी लिस्ट ऑफ डिमांड्स आप देखेंगे फॉर द आइडियल वुमन, तो आपको लगेगा कहाँ मिलता है ये आदमी, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस लिस्ट ही सेज दैट ही वुड ओनली मैरी अ वुमन हु इज अ वर्जिन, हैज नो पास्ट, is naturally beautiful, has the perfect height and is not a feminist. Okay, मतलब ये तो है nutshell, virgin तो हम समझ गए सारे के सारे हैं। अब naturally beautiful मतलब उसने जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया, 5'2" चाहिए उसको परफेक्ट हाइट, 45 किलो चाहिए उसको एग्जैक्ट वेट, उसको खाना बनाना आना चाहिए ऑल क्यूजींस, नॉन फेमिनिस्ट, सोशल मीडिया कभी यूज नहीं करती है, मेल फ्रेंड्स ना हो, परमिशन मांगे बिफोर गोइंग एनीवेयर, शेयर्स हर लाइव लोकेशन 24/7, हैज नो पास्ट, टेक्स केयर ऑफ माय पेरेंट्स लाइक हर ओन। ऐसी लड़की जैसे मिलेगी मैं शादी करने को तैयार हूँ। मुझे तो लगता है कि लड़की छोड़िए, आपके लिए थेरेपिस्ट तैयार है।
3: नो नो, आई नो अ प्लेस वेयर ही कैन गो टू।
1: कहाँ?
3: He can go to hell.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: भाई इंडिया के बाबा मार्केट में क्या कुछ नहीं बिक रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा एडवांस चल रही है वहाँ पे चीजें।
2: जप नाम
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: आई कांट गेट ओवर अभय देओल एंड जप, नॉट अभय देओल, व्हिच देओल इज दिस? बॉबी देओल एंड जप नाम। रेडियो मस्ती 24/7, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर चल रहा है, क्या चल रहा है अंतरा? मस्ती मैडनेस। और अंतरा जी madness. हमको बाबा जी की दुनिया में लेके जा रही है, चलिए जप नाम।
1: जी बाबा जी, इन दिस केस दिस बाबा जी जो है ये ताड़ ताड़ के चीजें आपके पास से, आपकी बॉडी से सब कुछ ताड़ ताड़ के आपके उससे निकालते हैं, पता है ना ताड़ना?
2: हाँ बिल्कुल,
1: प्रॉपर ताड़ना।
2: एंड
1: ही इज कॉल्ड द ताड़न बाबा।
2: ओह गॉड नो, ओके गो ऑन।
1: जो तो बेसिकली द वीडियो आई कैन सी इज बाबा जी ऐसे खड़े हैं, बंदी ऐसे खड़ी है, दोनों के आंखें और आंखें जो है एक दूसरे को ताड़ रही होती है। बाबा जी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से घूमते हैं और ताड़ते रहते हैं कि तेरे बॉडी में जो कुछ भी है वो अब ऐसे ताड़ ताड़ के मैं निकाल दूंगा, सब कुछ निकाल दूंगा। ही इज नोन फॉर एक्सोर्सिज्म एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कुछ भी नेगेटिव तेरे बॉडी में होगा मैं उसको ताड़ ताड़ के निकाल दूंगा। अच्छा ये तो हुई पूरी बात बाबा जी की। सबसे पहला कमेंट जो बंदी का इस वाले वीडियो पे आया है वो कहती है, Isn't this every second uncle on the streets like a ताड़न बाबा?
2: बात तो सही है, हमें तो बचपन से ताड़न बाबुओं की इतनी ज्यादा आदत है, स्पेशली दिल्ली में तो मैं कहती हूँ तड़वाने।
1: I felt so relatable. I said, भाई बहन like इतना रिलेटेबल तो मैं पोस्ट से नहीं कर रही थी जितना मैं तेरी बात से कर रही हूँ।
2: बट फर्क ये था कि हम उनको बीमारी समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे। बीमारियां निकालते नहीं है, वो फैलाते हैं। Agree?
1: हाँ वो कुछ भी बिक रहा है वही मैं कह रही हूँ, ताड़न बाबा उसके पास भी लाइन लगा के लोग आ रहे हैं कि वो ताड़ ताड़ के तड़ी पार कर देंगे सब कुछ।
2: I think this बाबा सिस्टम is something that I have a lot to talk about, मतलब ये पूरा शो खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं गाना चलाती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 वापस आइए, और अजीब गरीब खबरें हमारे लिए बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर कितनी सारी बतानी है ना आज इनको यार, टू मेनी न्यूज। या

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: चलिए अब बात हो जाती है हमारी सिंगापुर एयरलाइंस की बिजनेस क्लास की. ऑलराइट, एनीवन हुज ट्रैवल्ड बिजनेस सिंगापुर एयरलाइंस वुड नो एग्जैक्टली. वहाँ पर अभी अंदर जाते लोग बाद में हैं, पर आइडियाज उनके टोटली पहले से बदल जाते हैं, एक्सेंट बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है. सो ऐसे ही होती है, ठीक है. अंतरा से मत देखो.
3: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
4: I'm just wondering, is this why my accent has not changed?
2: Okay, I don't know if you've traveled business on SQ or not, but well, no. It is very beautiful. It is a very relaxing thing, especially agar tum bahut dino tak ghar se bahar ho na, to tum suddenly Singapore Airlines waise bhi, when you just enter Singapore Airlines, you just feel that you're half home anyway, you know. So kahin bhi ho duniya mein, ek wo feeling si aa jati hai, which I totally respect them for. Baki kya hai ki recently ek Singapore Airlines mein ek ladki ne travel kiya bhai Singapore to Los Angeles, aur ye hua July 28th 2024 mein. Okay, and main ye baat isliye aaj ke din mein bata rahi hu because abhi recently iska jo pura decision hai wo liya gaya. So jab aap Singapore Airlines mein baithte ho business क्लास में, सबसे पहले आपको साटेज सर्व होते हैं, ओके, ऑन वुडन स्क्यूअर्स एंड वेरी ब्यूटिफुली दे आर सर्व्ड एंड यू नो इट्स लाइक समथिंग दैट एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू. सो अब क्या हुआ कि जो वुडन स्क्यूअर होता है ना भाई साहब, हमें भी पता है सबको, है ना, उसकी एक छोटा सा छिलका जो था वुडन स्क्यूअर का, वो उस लड़की के गले में अटक गया था. Okay. And at that time, she had had immediate pain, choking sensation, coughing, respiratory distress and physical injury. 3.8 centimeters ki wo stick hoti hai, jiske andar se ek splinter jo hota na, ek splinter that measured 1.5 inches, matlab bas wahi atak gaya tha. Usne... So she suffered a very difficult moment on the flight, as she explained. Aur uske baad throat discomfort, vocal fatigue, raspiness, tightness, pain was prolonged, speaking, singing. And because she is, you know, somebody who needs her voice, she's a yoga teacher and a former child star, usko gana bhi hota hai and everything. To usne sue kar diya. Aur haal hi mein, of course, wo jeet gayi. वो सू करने के बाद में, और उसको बहुत सारे पैसे मिले हैं डैमेजेस. ऐसी बात है, तुम कुछ कहना चाहोगी इसके बारे में?
4: मेरा, मैं बहुत ही गंदी सी एक लाइन मेरे दिमाग में आई, फिर मुझे, मैंने अपने आप को रोक लिया कि लेट मी नॉट से दैट ऑन एयर, बट देन रियली फील बैड फॉर हर. हम लोग को सू भी तो नहीं करना आता रेणुका कि मतलब पकड़, कोई चीज पकड़ ले और हम सू कर दें.
2: जी,
4: हम बस दूसरा वाला ही सू कर पाएंगे
2: जो दो बार
4: वही आता है.
2: पर खबर में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अभी डिसीजन नहीं हुआ है, बट शी हैज सीक्ड डैमेजेस फॉर पास्ट फ्यूचर मेडिकल बिल्स, पास्ट फ्यूचर लॉसेस ऑफ अर्निंग्स एंड अर्निंग कैपेसिटी, इमोशनल डिस्ट्रेस.
4: बट इट्स सो मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा नहीं है, मतलब हाउ आर दे टू बी ब्लेम्ड? किसको पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा?
2: यस, तुम जैसे खाते हो, अब तुम अगर गर्दन में ज्यादा अंदर तक डाल लोगे किसी चीज को तो
4: इट्स वेरी
2: मिलते हैं आपको अगले घंटे. तब तक अगर आप साटे खा रहे हो तो ध्यान से खा.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: क्या क्या कुछ नहीं होता इस रंग बदलती दुनिया में।
1: क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत। सिंस शी इज बिजी जस्ट टेलिंग यू द खबरें, मैं तो स्वागत कर ही लू ना।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें। और हमारा
1: वैसे भी लॉन्ग वीकेंड है, आप लोग तो गायब भी हो रहे होंगे, है ना। क्यों नहीं, हम तो यहाँ काम करते रहेंगे, मस्ती मैडनेस चल रहा है।
0: हाँ जी, हाँ जी भाई, आओ ब्यूटी मार्केट में चलते हैं। इसी बात पे, लॉन्ग वीकेंड जब लोग जो है जो यहाँ पे है और बाहर छुट्टियों पे नहीं गए हैं, तो फिर वो तो घर में बैठ के फेस मास्क लगा ही सकते हैं। सो वेल, साउथ कोरिया पे एवरीबडी नोज दैट दे आर ऑब्सेस्ड विद यू नो द प्रोसीजर्स और ये सारी ब्यूटी की थिंकिंग बहुत ही ज्यादा वहाँ पे पॉपुलर है। तो वहाँ की एक मॉडल हांग है इनका नाम, शी बिकेम अल्टीमेट लेवल का उनका ऑब्सेशन हो गया विद द कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। सो ये सिलिकॉन और बोटॉक्स और ये कराते कराते चेहरे पे उनको, एंड शी बिकॉज शी वॉज मॉडल एंड सिंगर भी रह चुकी हैं, सो उनको लगा कि दिस इज द ओनली वे आउट, अगर ये नहीं कराऊंगी तो मेरी जिंदगी उसके बाद कुछ भी नहीं है। ऑब्सेशन इतने लेवल पर पहुंच गया, शी गॉट अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज डन। ओके, देन डॉक्टर्स अल्टीमेटली रिफ्यूज कि अब वो उनके ऊपर और कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे। We are not even going to inject you with anything because it's not good for you anymore.
1: हाँ, of course.
0: Like उस level तक पहुँच गया।
1: बिल्कुल।
0: But then she was obsessed. She took matters अपने ही हाथों में. She started injecting cooking oil.
1: है।
0: अपने face पे।
1: है। इतना भी क्या चिकना बनने का शौक मतलब? फिर क्या?
0: So that cooking oil it caused severe damage permanently, बहुत सारा कुछ उनके फेस में जो पहले बहुत सारी सर्जरीज के बाद ठीक हो गया था, I don't know, ठीक हो गया था is not the correct thing to say over here, but then whatever she was looking, it just went berserk, सब कुछ अंदर उनके फेस के टिश्यूज डेड हो गए and all of those things happened. डॉक्टर्स ने वापस से सर्जरी उसको ठीक करने के लिए परफॉर्म किया, बट हर फेस हैज बीन परमानेंटली डैमेज्ड एंड डिफॉर्म्ड।
1: सो आई थिंक गाइस, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहली बात तो आप जैसे भी हैं आप ब्यूटीफुल हैं, ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। और अगर आपको मेडिकल रीजन से कोई सर्जरीज, कोई चेंजेस, कुछ ना कुछ कराना जरूरी है, तो फिर प्लीज अपने आप कोशिश ना करें, प्लीज ना करें। क्योंकि इंसान, मतलब क्या कर रहे हो आप, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे काम है, ये क्या इंजेक्शन लेके कुकिंग ऑयल ठूस रहे हो अपने अंदर, खा लो इससे अच्छा।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: जिंदगी में बेटा एक चीज सीख लो, जब कोई एक्स हो गया तो वो एक्स हो गया, ठीक है? उसको वाई पूछने की जरूरत नहीं है, गया।
3: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है। करेक्ट, यू मूव ऑन, डोंट लुक बैक।
2: टोटली,
3: नो नो नो।
2: और अगर कोई एक्स तुम्हें बुलाने की कोशिश भी करे तो देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क। नो नो नो। लेकिन नहीं, ये बातें आप सीखोगे थोड़े, आप तो खुद भुगतोगे तब समझ में आएगी। तो अब मैं एक चिलिंग केस बताने वाली हूँ, बहुत ही चिलिंग केस है ये, ठीक है? सो अब क्या हुआ, एक पति पत्नी का डिवोर्स हो चुका था। नाउ द मैन कॉल्ड अप द डिवोर्स्ड वाइफ और उसको कहने लगा कि भाई यू नो लेट्स मूव ऑन, रिकॉन्साइल करते हैं, लेट्स नॉट दिस दैट, ओके। एंड वो भी बंदी आ गई, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी सिंस द डिवोर्स, और दो साल हो चुके इस बात को और फिर भी वो आ गई। एंड उसके बाद इन दोनों ने एक रील बनाई, एक वीडियो रील, एंड दिस इज हैपन इन इंडिया। उसने रील बनाई एंड इन द रील द गाय इज सिंगिंग द सॉन्ग याद तेरी बन गई सजना वे साडे सीने च नसूर। मतलब बेसिकली ही वॉज ईगो उसकी इतनी ज़्यादा हर्ट हुई पड़ी थी, एंड ही वॉज सेइंग कि यू नो मेमोरीज ऑफ यू हैव बिकम अ वूंड इन माई हार्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड उसमें ही इज ऑल्सो मेकिंग अ विक्ट्री साइन की जैसे कि यू नो वी हैव रिकंसाइल्ड एंड ऑल दैट। एंड सून आफ्टर दैट ही किल्ड हर, एंड ही किल्ड हर, ही बरीड हर बॉडी। एंड आफ्टर दैट मतलब एक आसपास कुछ लोग थे, जानवर, वो उसकी बॉडी भी आधी ज्यादा यू नो वॉज मिसिंग एंड व्हाटएवर। बट वेल, जैसे कहते हैं हर क्राइम कोई ना कोई एविडेंस छोड़ ही जाता है, तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया एंड ऑल दैट हैपन्ड एंड देन ही वॉज यू नो। बट द रियल रीजन वॉज दैट ही डिड नॉट लाइक द होल आइडिया दैट द वुमन हैड डिसाइडेड टू डिवोर्स हिम। And his ego was troubling him for 2 years and he did this.
3: हे भगवान, तभी तभी जो पहले कहा था बुलाएंगे बट जाने का
2: नहीं जाना।
3: Think about yourself first यार, क्या क्या इतना क्या वो मतलब अंधे मत हो जाओ।
2: और इसीलिए हमारे पास शो है ना, हमारा शो है डियर मस्ती दिल से, हमें लिखो, हम बताएंगे क्या करना है उस इंसान के साथ। जब भी ऐसा कोई सवाल आपकी जिंदगी में आए, राइट टू अस, Radio Musti 24/7. Right, Antra?
3: Absolutely.
2: Yes.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: भाई ये वाला वीकेंड अंतरा खबरें तो होती रहेंगी, लेकिन ये वाला वीकेंड आता है साल में एक बार, राइट? वीकेंड भी क्या, ये वाला मौका आता है. सो इट्स द नेशनल डे गाइस, हैप्पी नेशनल डे. ओ माय गॉड, हैप्पी 61st बर्थडे.

0: सिंगापुर
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है. आई लव दिस टाइम पीरियड. इस टाइम पे एक तो सिंगापुर इतना वो इतनी फील आ जाती है ना इस टाइम पे कि आप जहां से निकलो एंड यू सी. एंड मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या अमेजिंग लगता है, व्हेन आई एम सिटिंग इन द बस एंड स्पेशली व्हेन आई एम सिटिंग ऊपर वाले लेवल पे ना एंड आई पास बाय दीज कॉन्डोज एंड एवरीथिंग, हर जगह पे नो फ्लैग्स लगे हुए होते हैं. इट इज so beautiful, इतना खूबसूरत लगता है ना कि I cannot describe. I feel so happy.
0: Yeah, and Antra, मेरे story पे, Instagram की story पे last, I think just
1: I always wait for that.
0: Yeah, I had actually posted again as always the helicopters carrying the flag and you know that flag का तो 600 किलो से भी ज़्यादा का weight होता है. मैं तो उसके बारे में पढ़ रही थी कैसे बनाते हैं वो flag and all that. But that is besides. But you know, मेरे घर के बाहर is the place where fireworks के लिए बहुत लोग आते हैं and उस जगह पे ट्रैफिक मतलब तुम सोच नहीं सकते, लेकिन नॉट अ सिंगल हॉर्न. इनफैक्ट गाड़ियों पे गाड़ियां साइड पे लगी हुई हैं एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग एंड वेटिंग फॉर द सेम मोमेंट, द मोमेंट द फायरवर्क्स कम. यू नो मतलब किसी को ये चिंता नहीं है कि क्या है इतना. एंड द वे द ट्रैफिक इज बीइंग मॉडरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द पुलिस, ओ माय गॉड, अमेजिंग वर्क.
1: सो
0: यस, सो हैप्पी नेशनल डे वाला वीकेंड गाइज. लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ अदर स्टफ हैपनिंग. हमारे शाही महारानी में ऑफकोर्स पूरे ऑगस्ट बहुत ही कमाल का जो उनका ब्रंच के प्राइसेस चल रहे हैं, प्लस 9th August स्पेशल.
1: That is right.
0: Very special brunch, right? Kya ho raha hai?
1: Yeah, they have this special prata station with Singapore style chicken curry, which I am like, oh my god, that is amazing.
0: Yummy. Absolutely. So, agar aap baki kisi din nahi ja sakte, 9th August ki booking to definitely karwa lijiye. Shahi Maharani 6235-8840. Mujhe to number rata hua hai. And,
1: oh my god.
0: Yeah, and Joya Lucas. My god, the kind of promotions that they have, 30% off making charges, 9% GST wave off. This only happens one nation, infinite brilliance. और भी बहुत कुछ है उसके बारे में बताएंगे, कोशिश करेंगे अभी. लेकिन ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइज, हैप्पी नेशनल डे वीकेंड एंड ऑफ कोर्स रेड एंड व्हाइट पहनना.

0: किस तरफ जाएंगे आप, यही है सवाल इस बार मेरा।
1: This is Masti Madness on Radio Masti 24.
2: तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनी, मैं तो तेरे पीछे ही आऊं, जहां जाएगी मैं आ रही हूँ। ठीक है, रेडियो मसी 24/7 पर। जी हाँ, अंतरा पूछ रही है मेरे से कहाँ जाओगे, केड़े पासे जाइए सजना।
0: ओह गॉड, I was so glad that you know last week ये गाना था ही नहीं, और जो मैंने तबाही मचाई है इनके countdown की, उस पे तो मुझे और भी गर्व है अपने आप पे। But well, coming back to this
2: वो
0: one,
2: मुझे कल पता लग गया है और मैंने देखा है कि मेरी playlist किस तरह के खिलवाड़ किए गए हैं, घिनौने किस्म के, और मुझे कल कितनी मेहनत करनी पड़ी है, ये कोई मेरे से पूछे। But that is off mic discussion, खबर बताओ
0: जी भाई। कर्नाटका के हाई कोर्ट में एक बंदी केस लेके आई है। अब जज पूछ रहा है कि इसको किस दफा में डाला जाए, कि कैसे दफा कर दिया जाए। आई हैव नो आइडिया। सो बेसिकली शी इज सेइंग कि भाई मदर इन लॉ जो है मुझसे रोज डोसा बनवाती है, रोज रागी बॉल्स बनवाती है, इट इज हैरेसमेंट एंड क्रुएल्टी। अब जज साहब पूछ रहे हैं कि मतलब उनके दिमाग में हम श्योर हो गए कि इसे कैसे दफा करूं इसको, या किस दफा में डालूं। कह रही है मेरा हेयर शैम्पू चेंज कर दिया इन्होंने और उसकी वजह से मुझे हेयर लॉस हो रहा है, तो ये क्रुएल्टी है जज साहब।
2: यहाँ पर है तो सही, है तो सही, मेरे हिसाब से तो ये टू मच
0: डिफरेंस ना, वो हम दोनों के अंदर की लड़कियां हेयर लॉस पे जो इसके साथ हुई है। आपने नोटिस किया, डोसा रागी बॉल तक कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, हेयर लॉस जैसे ही आया।
2: I'm done with this. But यार ये ना, ये हेयर की बात नहीं होनी चाहिए। पता है कितना कितना पाल पोस के हम इनको बड़ा करते हैं, एक एक बाल अगर किसी के खाने में भी डल जाए ना, तो मैं कहती हूँ वापस दे दे, मेरा बाल है तो मैं वापस लगाऊंगी। लेकिन That's not the point. The point is
0: Renuka became like कि तुझे माँ की साड़ी नहीं लानी चाहिए थी इस बात पे। Like she has become that. इनकी intensity उतनी है।
2: कुछ भी कर लो, बाल माँ का नहीं होना चाहिए। You know what I mean? बिल्कुल। हाँ। तो इसने बालों को कैसे हाथ लगाया यार? नहीं यार, ये कोई ना कोई दफा बनाओ। मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलो, ये वाला तो जाना ही चाहिए। ठीक है ना, जो जो मेरे साथ है इसी टाइम लिखे 91518963 पर। बालों को नहीं, बालों को नहीं।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: All right, and on Radio Musti 24/7, obviously, ये वाला शो आज की तारीख है 7 तारीख और आप सुनेंगे इसको दोबारा से on 8 तारीख, right? और 8 तारीख को हम कहाँ होंगे अंतरा जी, कहाँ होंगे हम इस टाइम?
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो,
1: हमारी पहचान
3: अपनी जगहों पे ऐश करते हुए। छुट्टी है छुट्टी, encore है encore।
1: तुम तो ना बस यही काम करो, मैं पहचान की बात कर रही थी और हम होने वाले हैं पहचान। हमारी पहचान क्या है? हम भारत से आए सिंगापुर और हम सिंगापुर में भारत को ढूंढते हैं, बनाया है हमने, और साथ ही साथ में सिंगापुर को हम कितनी जोर से एकदम अपना समझ के बैठे हैं। कैसे हम लोगों की लाइफ कितनी अलग है ना, दी एनआरआईज एंड द पीपल हु ट्रैवल्ड अवे फ्रॉम इंडिया, राइट? सो उसी की एक पोएट्री में, ऐसी जिंदगी के बारे में पोएट्री के तरीके से और ब्यूटिफुल से, अमेजिंग से तरीके से टीम आहिस्ता आहिस्ता जो कि 8th को प्रेजेंट कर रही है पहचान, राइट? एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग देयर एंड सो आर यू अंतरा जी, बाय द वे, कि हम वहां पर बैठ के सुनने वाले हैं उनको, बिकॉज आई लव टीम आहिस्ता आहिस्ता, द वे दे स्पीक एंड दे, कहते हैं ना, दे वीव वर्ड्स इतनी ब्यूटिफुल तरीके से करते हैं, और इस बार वो लोग कर रहे हैं कल के दिन में 8th को, एंड अगर वैसे तो इट्स अ सोल्ड आउट शो, बट डेफिनेटली अगर आपको एक दो टिकट्स चाहिए तो शायद मैं दिलवा पाऊं, मतलब मेरी इतनी तो सुनते
3: हैं साइड से।
1: हाँ,
3: तो मैं तो यही कह रही थी कि अपनी अपनी जगह पे हम ऐश इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी सीट्स अलग अलग हैं।
1: बिल्कुल।
3: तो ये अपनी सीट पे बैठ के ऐश करेंगी, मैं अपनी सीट पे बैठ के ऐश करूंगी, बट देन डेफिनेटली इट इज, आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज रेणुका पहले इनके शो में जा चुकी है एंड शी हैड स्पोकन सो हाईली अबाउट देम, आई वाज लाइक कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा वी विल गो, I'll go and watch them and I'm totally looking forward to it.
1: Absolutely. So, भारत और सिंगापुर जो दोनों देश हमारे दिलों के इतने ज़्यादा करीब हैं, उन दोनों के बीच में ये poetry हिंदी में, apart from just poetry, there is this unplugged singing which goes बीच बीच में. It just is amazing.
3: Very nice. Yeah. Yes.
1: So, this is happening tomorrow and of course, apart from that, happy National Day everybody. Before we say goodbye, हम चाहेंगे कि हम माजुला सिंगापुर के लिए खड़े होके बिल्कुल एक सलाम हम सब की तरफ से, बहुत ही प्यार वाला, एंड ऑफ कोर्स डोंट मिस द फायरवर्क्स ऑन संडे, राइट अंशरा जी?
3: यस, लुकिंग फॉरवर्ड, सो एक्साइटेड,
1: हैव अ गुड वीकेंड गाइस एंड एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड। वैसे मंडे सुबह मैं यही मिलूंगी 7 बजे न्यूज लेके, आ जाना। हाउ बोरिंग डज दैट साउंड राइट नाउ?
4: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है,
5: लड़ी है, लड़ी है, लड़ी है, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
2: रहो। द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: दिन मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: No.
0: यार इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: I don't know.
0: देख अकेली लड़की, अनजान शहर,
2: कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

0: कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया,
1: झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल,
0: कि जैसे तुझको बनाया गया

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Musti 24/7 live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than life. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

securing future, doubt, truth, love, uncertainty, confusion.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
1: रात अकेली है।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: रात अकेली है
1: रात अकेली है तो क्या हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: This is Slump

0: Happy birthday, Singapore!
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
3: रात

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

हमसे ओ हसीना ये न कहना बच्चे रहना हमसे देखे जो हम एक बार तुम्हें हो जाए हमसे प्यार।

फिर भी जाने ना जाने ना जाने।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: I love Singapore. It's rich culture and heritage.
1: 国庆日到了，非常开心，有假期又能够跟国家一起庆祝。
2: திருமயம் மதிக்கும் சிங்கப்பூரின் ஒரு குடிமகன் என்பதில் எனக்கு பெருமை.
3: Saya bangga menjadi rakyat Singapura kerana penuh dengan budayanya.
4: With its unity in diversity, Singapore has many facets to it that are truly cherished. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners a heartfelt and proud National Day.
5: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।
6: जोश में रहो।
7: हाँ, शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो।
8: अरे बिल्लो बोला बिल्लो।
7: जो भी देख यही पूछ है एक सुखी जगाती है कयामत कोई।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: हैप्पी बर्थडे सिंगापुर।

0: recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.
1: लव गुरु तुम्हारा लव का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
2: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा, जा उसके लिए दो

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: फॉर मी नहीं चलेगा। वैम बैम थैंक यू मैम नहीं चलेगा। वन नाइट स्टैंड नहीं चलेगा।
1: लिसन मैडम, तो क्या चलेगा?

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.